0: रखा हो, केवल तो मैसेज तो आनी नहीं, वक्त की सरकार में भी देना चाहना कि जेड़ी गल 300 वरा पहला औरंगजेब ने आखीए तो तुसा माड़ी समझिए कि जिंदे ने गुरु तेग बहादुर साहब की मदद मंगी सी, 300 वरे बाद वो गल थी जबान पर आए ये भी चंगा नहीं लगता। जो उदो गुना सी अज भी गुना है, जो उदो हिंदुस्तान एक इस्लाम का देश नहीं सी बन सकता तो हूं भी हिंदुस्तान केवल हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। जे उदो हर एक हिंदुस्तान के वसनीक के हक राखवे सन, हर कोई अपने विश्वास में जी सकन का हक मंगता सी, ते आज भी हिंदुस्तान के हर वसनीक के हक राखवे ने, वो भी अपने ढंग नाल जीवन का अपने धर्म विश्वास में जीवन का हक रखता है। इन हकों नूं पछाणो तां कि इस धरती ते अमन बनिया रहे। इन्हां शब्दां नाल सिमां दा जा चिका फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा।
1: Thank you for listening to CISK Sikh Radio 94.3 FM, broadcasting from the Western Singh Sabha Gurdwara in Williams Lake, British Columbia, Canada. You may contact our broadcast center by telephoning 250-392-3874 or by email at singhsabha2@gmail.com. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. The pure belong to God, all victories belong to God.
2: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਰੇਡੀਓ 94.3 FM। ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ BC ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 250-392-3874। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, 250-392-3874। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, singhsabha2@gmail.com, singhsabha2@gmail.com। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

मिश्रा मर जाऊं आखण औखा साचा नाऊं साचे नाम की लागे भूख उत भूख खाए चली है दुख सो क्यों बिस्तरे मेरी माए साचा साहेब साचे नाए रहाउ साचे नाम की तलवड़ियाई आख थके कीमत नहीं पाई जे सब मिलकर आखण पाहे वडा न होवे घाट न जाई।

बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। मुंदावणी महला पंजवां थाल विच तिन वस्तु पईओ

को पुंचाए तिसका हुए उधारो। ए वास्तव तजी न जाई नित नित राखो रतारो। तम संसार चरण लग तरिय सब नानक ब्रह्म।

आप पार्श परम त्यानी साच साचे पावे आनंद अनदन हरख साचा दुख किलबिख बर हरे सच नाम पाया गुर देखाया मैल नाही सच मने संगत मीत मिलाप पूरा नावणो गावे गावण हार शब्द सुहावणो सारा ही साचे मन सतगुर पुन दान दया मते फिर संग भावै सहज नावै बेणी ता संगम सत सते आराधे कंकार साचा नित दे चढ़ै सवाया गत संग मीता सत संत संगत कर नदर मेल मिलाया कहन कहे सब को एके वड्याखी है हौ मूर्ख नीच अजान समझा साखी है सच गुर की साखी अमृत भाखी तित मन मान्या मेरा कूच करहे आवै बिखला दे शब्द सच है गुर मेरा आखण तोट न भगत भंडारी भरपुर रहे आसोई नानक साच कहे बेनंती मन मांझै सच सोई आखण तोट न भगत भंडारी भरपुर रहे आसोई नानक साज कहे बेनंती मन मांझै सच सोई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु जी ओ सोहेलारा गुरु जी की महला पहला फूल पार गुरु प्रसाद जय कारु कीर दाखिए करते गावे विचारु तत्कर गावो सुहिला सिरो सृजनहारु तुम गावो मर निरपो का सुहिला हुआई जत सुहिला सदा सुख राहु नेत्र जी अड़े संभाली आना देख गे बनहार तेरे दान किंत न पवे जिस दाते कवन समार संभ सहा लिखिया मिलकर पावो तेला देव सजन सिसड़ियां जाओ वसा सो मेल कर करे हो पहुंचा सदे नत पवन सदनहार सिमरिया नानक से दे अवन रागा सा महला पहला छे कार छे गुर छे उपदेश गुर गुर एक होवे सनेक बाबा जय कर करते कीर्त होए सो कर राख बधाई तोय राव विश्व जसिया घड़िया पैरां थेती वारी मह होवा सूरज पुरत अनेक नानक करते के केते वेस राग तनासरी महला पहला गगन मैथाल रव चंद दीपक बने तारिका मंडल जनक मोती धूप मलया नलो पवन चवरो करे सगल बंदराए फूलंत ज्योति कैसी आरती होए पवखंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत पेरी राव सहस तब नैन नन नैन है तोय कौ सहस मूर्त नन एक तो ही सहस पद विमल नन एक पद गंध देनु सहस तब गंधे विचलत मोही सहस तब गंधे विचलत मोही सब मैं जोत जोत है सोए किसदा चानण सब मैं चानण होए गुर साखी जोत प्रगट होए जोत सुभावै सो आरती होए हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो अन दिन मोहि आही प्यासा कृपा जल दे नानक सार इनका होए जाते तेरे नाही वासारा गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर व भरिया मल साधु खंडल खंडाही पूर्व लिख लिखे गुर पाया अमर हर ले मंडल मंडाही कर साधु अंजलि पुन वड्डाही कर रंडावत पुन वड्डाही रहाओ सागत हर रसाद न जाने तने अंतर हम मैं कंडाही ज्यो ज्यो चले जब दुख पावे जम काल सहे सिर डंडाही हर जन हर हर नाम समाणी दुख जन्म मरण बल खंडाही अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बसो खंड ब्रह्मंडाही हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख बड़ वड्डाही जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडाही राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बेनंती सुनो मेरे मीता संत कहल की बेला इया खाड़ चलो हर लाहा आगे बसन सुहेला औद कट दिन सरैणारी मान गुर मिल का सवारी रहाओ ए संसार विकार संसे मैं दरियो ब्रह्म ज्ञानी जिस जगाए पिया वह रस कथ कथा तिन जानी जा को आए सोई बिहाज हर गुर ते मने बसेरा निज कर महल पावो सुख सहजे बहर न होए गो फेरा अंतर जामी पुरख विदाते शरदा मन की पूरे नानक दास है सुख मांग मोकार संतन की धूरे अंतर जामी पुरख विदाते शरदा मन की पूरे नानक दास है सुख मांग
ਮੋਖ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ।

0: सर्व कलाए सम्राट तू
1: असी मूड मत तू ए बख्शन हार दाता रखी साडे सिरां उत्ते हाथ तू
0: तू करदा मुरादां सबे पूरियां
1: जेड़े तैनू हृदय चो चिता दे
0: करदा मुरादां सबे पूरियां
1: जेड़े तैनू हृदय चो चिता दे
0: अपने प्यारे अनुता दे सेवका

0: पानी पड़ के सोती मिले मनुखानु
1: ए पानी पड़ के सोती मिले मनुखानु
0: ओ राज समझदा बंदा असल कहानी दा
1: कुल दुनिया में

0: वो ए पानी ता सब दे कारज रास करे,
1: ए पानी ता सब दे कारज रास करे,
0: वो ए पानी

0: तो जगत कबूल कर लेंदा, चलती रहती है। पर कोई खेडे च बेईमानी करे, ताश खेड रहा है, कोई कुश्ती खेड रहा है या फुटबॉल खेड रहा है, वर्ष के जो खेल है उहदे च कोई बेईमानी करे तो कबूल नहीं, परवान नहीं, लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है। क्यों? खेल दे आधार ही नियम है कि जब नियम ही तोड़ देता तो खेल खेल नहीं रह जाता, खेल भी धंधा हो जाता है, खेल भी संसार बन जाता है, खेल भी बाजार बन जाता है। खेल ते उतने चिर तक खेल है जब कोई मुद्दा नहीं ते मकसद नहीं, ते खेल दा आधार केवल एक कोई है, नियम। तो परमात्मा दी सारी जे भी बनकर है किसे नियम ते खड़ी है, और जे टुट भज है ये भी किसे नियम ते खड़ी है, पर बनाण दा उसका कोई मुद्दा नहीं। अगर कुछ मनुख बना के बनना चाहता है तो स्पष्ट गल है मनुख अधूरा है। पूरा मकान बना के कुछ बनना चाहता है, कम धंधा बना के कुछ बनना चाहता है, मनुख कुछ बनना चाहता है, तो बनन लई उन्हों कुछ चाहिए। मनुख दे बनाण दे नाल कुछ मुद्दा है, क्योंकि कुछ बनता है तो खुद भी बनता है, खुद भी संवरदा है, तो सिंगारिया जाता है, तो अगां वधदा है। अगर परमात्मा दे भी बनाण दा कुछ मकसद है, मुद्दा है, तो बनाण नाल ही वह कुछ बन सकता है, तो इतनी गल स्पष्ट है, अधूरा है, अजे अधूरा है। कुछ बना के बनेगा, कुछ बनाएगा, कुछ उसका मुद्दा है, मुद्दा उसका होंदा है, मकसद उसका होंदा है, जो अधूरा है। तो परमात्मा से संपूर्ण है, पूर्ण पूर्ण उसनों कहने जे भी कोई सीमा नहीं, कितों शुरू होंदा है, कित्थे खत्म होंदा है, कोई सीमा नहीं। तो उसने बनाने का कोई मुद्दा नहीं, और बिगाड़न का भी, नाश करने का भी कोई मुद्दा नहीं। फिर की है खेल? आवन जान एक खेल बनाया, आ गया कारी कीनी माया। ये तो उसका खेल है। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहने लगे उस तो उत्पत्ति हो रही है, उस तो पालना हो रही है, और उसे तो ही नाश हो रहा है, और उसे का ही खेल है, उसे दी लीला है। तो प्रश्न खड़ा होया, क्या ब्रह्मा विष्ण महेश नहीं ने? सदगुरु कहन लगे है गए ने। इस काया अंदर ब्रह्मा विष्ण महेशा, जिस उपत सब संसारा। परमात्मा दे नाम व्यक्तियां नू दिते गए, बंदियां नू दिते गए। तो साहिब कहंदे ने ए ब्रह्मा, ए विष्ण, ए महेश, ए मनुख दे अंदर ने रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। रजोगुण बनाण दीआं रुचियां, ये तमाम जीवां दे अंदर रजोगुण मौजूद है। पंछी भी घोंसले बनांदे ने, कीड़े मकोड़े भी खुड्डा बनांदे ने, मनुख भी कुछ बनांदा है, रेलां मोटरां गड्डियां बना रहा है, सड़कां बना रहा है, पुल बना रहा है, तरह तरह के साजो समान बना रहा है। ये जिहड़ी बनाण दी रुचि है ये रजोगुण है। तो जो कुछ बनाया है ये टिकिया रहे और इनू टिकाई रखना है। दरअसल ये पालना की रुचि भी मनुख के अंदर सतोगुण, ये विष्णु है। बनाण की रुचि ब्रह्मा है। तो यकीन जानो मनुख ही नाश करता है, और मनुख ही नाश करने के साजो समान बनाता है। क्यों बनाता है? मनुख के अंदर तमोगुण है। एटम बम मनुख बना रहा है, हाइड्रोजन बम मनुख बना रहा है, बस्तियां दिया बस्तियां मनुख ने उजाड़ियां ने, शहरां दे शहर मनुख ने तबाह किए ने, मुल्का दे मुल्क गर्क किए ने, तो मनुख ने ही किए ने। क्यों? कि मनुख के अंदर तमोगुण भी है। सिर्फ मकान बनांदा नहीं, मकान ढांदा भी है। सिर्फ ये शहर तामीर नहीं करता, शहरां नू अग भी लांदा है। सिर्फ बस्तियां बसांदा नहीं, बल्कि मनुख बस्तियां उजाड़दा भी है। जब रजोगुण प्रधान होता है तो कुछ बनांदा है, तो जब तमोगुण प्रधान होता है कुछ बिगाड़ता है, जब सतोगुण प्रधान होता है तो उसारे हुए की पालना करता है, उन्हें टिकाण भी जो है कोशिश करता है। साहिब कहंदे ने ये तिने गुण ब्रह्मा विष्णु महेश ने और मनुख के अंदर ने, और इसे नाल ही समुचे संसार की कार चल रही है, विहार चल रहा है, समगर जो है जगत चल रहा है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का फिर मूल उपदेश, मनुख अपने शुभ कर्मा करके परमात्मा दे नेड़े है, अशुभ कर्मा करके दूर है। कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर। जो परमात्मा दे नेड़े है वह स्वर्ग दे नेड़े है, जो परमात्मा तो दूर है वह नरक देच है, जो परमात्मा दे नेड़े है वह प्रकाश देच है, जो परमात्मा तो दूर है अंधकार देच है। जो परमात्मा दे नेड़े है, आनंद दे च है, जो परमात्मा तो दूर है वो दुख दे च है। नेड़ता सुख है, दूरी दुख है। नेड़ता प्रकाश है, दूरी अंधकार है। और जो मनुख जितना दूर चला जाएगा उतना अंधकार दे भटक जाएगा। इस वास्ते गुरु नानक की दृष्टि परमात्मा एक नूर है, एक चानना है। चांदना चांदन आंगन प्रभ जीव अंतर चांदना, नाम जपत कोट सूर उजारा बिन से भरम अंधेरा। नाम जपदिया जपदिया करोड़ा सूरजा वर्गा चानना हो जाता है, क्योंकि परमात्मा चानन है, परमात्मा प्रकाश है, परमात्मा आनंद है, अकाल पुरख खुशी है। दूरी अंधकार है, और जैसे जैसे मनुख की दूरी होंदी है भटकना शुरू होंदी है, दुख के संताप शुरू होंदा है। अजोके युग दे अजोके समय दे मनुखता नु दुखी देख के कहना पैंदा है कि रब तो दूर मैं, परमात्मा तो दूर ने, क्योंकि घर घर दे दुख, हर व्यक्ति कोल दुख, ते दुख दी अगन दे सारे दा सारा संसार जल रहा है। गल स्पष्ट हो गई, दूरी है। करमी आपो आपनी के नेड़े के दूर, गुरु नानक की कोशिश जगत किसे तरीके नाल नेड़े हो गए। तो नेड़े दा साधन आपने सच दा जप दसिया। गुरु नानक की पहली बाणी दा नाम जप है, ते गुरु नानक की मूल शिक्षा ते दीक्षा जप है। जो जप करदा जाएगा, जो उसका नाम अपनी जबान ते रख के रटन करदा जाएगा, नेड़े हो जाएगा। और जो नेड़े हो जाएगा वो प्रकाश दे चला जाएगा, क्योंकि सच एक परम शक्ति है। ते जिड़ा उस शक्ति दे नेड़े चला गया वो महान शक्तिमान हो जाएगा। जब मनुख किसे महान मनुख दे नेड़े हो जाता है, किसे हुक्मरान या राजे दे नेड़े हो जाता है, तो राजे दे नेड़े होने करके उसका भी सम्मान होता है। ते जो राजियां दे महाराजे परिपूर्ण परमात्मा दे नेड़े हो जाए तो कुदरती गल है, फिर सम्मान उसका भी होगा, प्रतिष्ठा उसकी भी होगी, महानता उसकी भी होगी। तो समग्र पृथ्वी दे भ्रमण करके गुरु नानक दी कोशिश रही कि मनुख जप करके उस सच दे नेड़े होवे। ते जप ही शुभ कर्मा दे चों शुभ कर्म है, और जप ना करना ही अशुभ कर्म है। ते अशुभ कर्म नाल दूरी है, शुभ कर्म नाल नेड़ता है। कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर, गुरु नानक दा मूल संदेश उपदेश के मनुख उस सच दे नेड़े होवे, उस नूर दे नेड़े होवे। और आप दी दया, आप दी कृपा, आप दी प्रेरणा हर जीव नू यही रही कि किसी तरीके नाल जीव सच दे नेड़े होवे।
1: केलबू दी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ए प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हां कि इस प्रोग्राम नू होर भी खोज भरपूर बनाने लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे। साड़े स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर ता आप जी नू पता ही है, जे नहीं ता ओ भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3374 अति फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3375।
2: साड़ा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call
4: 250-392-3874. Sri Vahe Guru Sahib Jiyo Aad Gure Namay Jugad Gure Namay ਸਤਿਗੁਰੇ ਨਮੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਨਮੈ।

गोविंद कृपा तारे प्राव राखी पैज हमारी हर के चरण सदा सुखदाई जो इच्छा सोई फल पावे वृथि आस न जाई रहाओ कृपा करे जिस प्राण पत दाता सोई संत गुण गावे प्रेम भगत तांका मन लीना पार ब्रह्म मन पावे आठ पहर हर का जस रावणा

करतै संत साध भय साथी, कर गए लीने सर्वस दीने, आपे आप मिलाया कौ नानक सर्व थोक पूरन, पूरा सतगुर पाया कर गए लीने सर्वस दीने, आप हैं आप मिलाया

पढ़ने वाला है राम नाम, पढ़ने वाला है मेरी पटिया लिख दियो श्री गोपाल, ये पढ़ने वाली गल है। वाहिगुरु दा नाम मन दी पट्टी ते लिखिया जावे, कोई लिख देवे, कौन लिखेगा? सतगुरु लिखेगा। कदों लिखिया जावेगा? जब तुसी इस नाम तो बिना जी नहीं सकोगे, जब इस नाम तो बिना जी नहीं सकोगे, नाम दी तड़प जी दे अंदर होवे, जो मतलासी होवे उस राम नाम दा, जो दर्शन चाहुंदा होवे कि राम नाम है की, जरा किसी पंडित नूं पुछो तो सही, भई राम नाम है की, वो तुहानूं दस नहीं पाएगा। केड़ा पंडित दस पाएगा? वो पंडित दस पाएगा, सो पंडित जो मन पर बोध है राम नाम आस्तम में सोध है, राम नाम सार रस पीवे, उस पंडित के उपदेश जग जीवे, जो राम नाम दा रस जानदा है, फिर राम नाम मिठा है वो दस पाएगा, जो केवल रामायण पढ़दा वो नहीं दस पाएगा। ऐसे तरह सिख गुरु नानक दे चरणा दा प्यार किए दस नहीं पाएगा, पढ़ने वाला नहीं दस पाएगा, चाहे वह सारी गुरबाणी उन्हें याद होवे वो नहीं दस पाएगा। भाई ये दसण दा विषय नहीं है, जिसने गुरु नानक दे चरणा दा रस पीता है वो दस पाएगा। मायरी चरण गुर मीठे, सतगुरु जी कहंदे ने ऐ मेरी माता बुद्धि, बुद्धि नु क्या है, ऐ मेरी मां बुद्धि, सतगुरु दे चरण मिठे हन, बड़े मिठे हन। फरीद नु ए रस है, फरीद नु, फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़ माखो माझा दुध, सबे वस्तु मिठियां रब न पुजे तो। सो पंडित जो मन पर बोध है राम नाम आत्म में सोध है, इन्ना राम नाम जपे कि आत्मा साक्षी हो जाए। डू यू अंडरस्टैंड माई वे ऑफ टॉकिंग? तुसी इन्ना वाहिगुरु नाम जपो, चाहे लिखो, चाहे मन ते लिखो, चाहे कागज पे लिखो, एक कापी का टंग भी है, राम राम राम राम एक पन्ना रोज का लिख लिया करो, एक रजिस्टर ला लो ते वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु लिखो। एक मेरे मुसलमान अजीज सन, ओ अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह लिखते सन, उन्हें कलम भी मैं दिती, दवात भी मैं दिती, साई विच पा के दिती, ओ अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह लिखते, अल्लाह को प्यारे हो गए। होना ही था, जरूरी था हो जाए। सो पंडित जो मन पर बोध है राम नाम आत्म में सोध, राम नाम इन्ना जपो कि आत्मा का ज्ञान हो जाए, तुसी कौन हो उथो तक चले जाओ, फिर राम नाम का जपना बंद हो जाएगा, राम नाम का जपना बंद हो जाएगा, फिर रस आना शुरू हो जाएगा। बस उन्हों अमृत रस कही दे, आबे हयात कही दे, जीवन रस कही दे, राम नाम आत्म में सोदे, राम नाम सार रस पीवे, उस पंडित के उपदेश जग जीवे। ए गुरु अर्जुन साहब के शब्द हैं। सो पंडित जो मन पर बोध है राम नाम आत्म में सोध है, राम नाम सार रस पीवे, उस पंडित के उपदेश जग जीवे। सोया हुआ जो इंसान है वो जाग जाएगा, हम सब सोए हुए पड़े हैं। हजूर कहते हैं कि प्राणी जाग जाएगा अगर कोई रसदायक पंडित मिल जाए, अगर कोई ऐसा शिष्य मिल जाए जो जागता हो, जिसने वो रस पिया हो, तो माई चरण गुर मीठे, हर के चरण सदा सुखदाई, जो इच्छे सोई फल पावे, बिरथी आस ना जाई। जो मांगोगे वही मिलेगा, जो चाहोगे वही होगा, लेकिन मत कुछ मांगना। इस द्वार से अगर मांगना चाहते हो तो ईश्वर ही मांगना, ईश्वर के सिवा और कुछ ना मांगना। विण तुद होर जे मंगना, सिर दुखा के दुख देह नाम संतोखिया, उतरे मन की भुख गुरवण तिन हरिया कीतिया, नानक क्या मानुख। अहल्या ने एक ही बार श्री राम का दर्शन किया, एक ही बार। वो पत्थर तो नहीं थी, पत्थर जैसी थी, जिस स्त्री को उसके पति छोड़ दें वो पत्थर नहीं हुआ करती, पत्थर जैसी हो जाती, उसकी बुद्धि

पत्थर जैसी हो गई थी। एक ही बार श्री राम का दर्शन किया, वो जीवित हो गई, एक्शन में आ गई। एक ही बार दर्शन किया, कहा हे राम, जिसको मैं बाहर देख रही हूं वो तो मेरे अंदर बैठा है। भगवान कहने लगे, बेटा बस यही कुछ मैं चाहता था, इसलिए मैं तेरे पास आया था, और तो मेरा कोई काम ही नहीं था। तेरे को समझाने की बात ही नहीं है, तेरा तो पति जो था वो बहुत आलम फाजल था, तू तो गौतम ऋषि की स्त्री हो, तुझे ज्ञान की जरूरत नहीं है, तुझे दर्शनों की जरूरत है। तो हम क्या हैं भाई, हम भी तो अहल्या जैसे हैं, हम भी तो पढ़े लिखे हैं। कौन आदमी है जो गुरु ग्रंथ साहब की वाणी नहीं जानता, सुगुणी साहब का पाठ नहीं करता, जपजी साहब का पाठ नहीं करता, या वेदांत नहीं पढ़ता? किताबें तो बहुत सी हैं पढ़ने के लिए। अरे राम नाम पढ़ाने वाला कोई खोज लो, बात यहां खत्म होती है। कोई ऐसा प्रेमी खोज लो जो आत्मा का ज्ञान दे सके। इसलिए चाहे कागज पर लिखो, चाहे मन पर लिखो, चाहे कपड़े पर लिखो। मैंने हरिद्वार में और बनारस में ऐसे प्रेमी देखे हैं जिन्होंने जो धोतियां बांध रखी है ना, उसमें राम नाम लिखा है, मैंने अपनी आंखों से देखी। अरे कहीं लिख लो, साफे पर लिख लो, कमीज पर लिख लो, अपने मन पर लिख लो, कागज पर लिख लो, कहीं तो लिखो, राम नाम लिखो, वाहिगुरु का नाम लिखो। वाहिगुरु जी मिलेंगे, एक दिन ऐसा आएगा ये शरीर छूट जाएगा, वो लिखा हुआ पढ़ा हुआ नाम नहीं छूटेगा, वही राम नाम है। कृपा करे जिस प्राण पर दाता, सोई संत गुण गावे। कृपा करे, वाहिगुरु जब कृपा करते हैं तभी हम भजन कर सकते हैं। लेकिन एक बात मन लो कि असि हूं आए थे, अपनी मर्जी नाल ते आए नहीं, वाहिगुरु सानू ले आया, वाहिगुरु जी सानू ले आया, इकट्ठे कीता, असि उस वाहिगुरु के बच्चे हैं, उसने सानू समा दिता है, असि आके एकत्र होए हां, उन्हां दा वचन सुन रहे हां, ये बहुत वड्डी कृपा है। कृपा करे जिस प्राण पद दाता, सोई संत गुण गावे। संत का अर्थ है प्यारा, प्यारे का अर्थ है भगत, भगत का अर्थ है शिष्य, और शिष्य का अर्थ है अर्जुन जैसा सिख, मर्दाने जैसा सेवक, भाई मंझ जैसा दास, भाई दया सिंह वर्गा गुरु का प्यारा, हनुमान जैसा शिष्य प्यारा, उसको कहते हैं संत। कोई संत गुण गावे, अब गीता तो अर्जुन के मन में ही है, बाहर तो गीता किसी के मन में नहीं है, आंखों में तो है, किताबों में तो है, मन में नहीं है। जिसके मन में गीता है वो भक्त है, वो संत है। राम नाम तो सभी पढ़ते हैं, रामायण तो सभी पढ़ते हैं, और कथा भी बहुत करते हैं, बहुत सुनते हैं। इवन कथा करने वालों के मन में राम नाम नहीं है, जिसके मन में राम नाम है वही संत है, वही भक्त है, वही गुरु का प्यारा है। इसलिए अर्जुन बनो, हनुमान बनो, भाई मंज बनो, मर्दाना बनो, अगर बन सकते हो तो प्यारा बनो, पाई से पाई दया सिंह बनो, जो गुरु दशम पातशाह का प्यारा था, एक ही प्यारा था, एक ही फरसान था, गुरु गोविंद सिंह का महाराज का बच्चा एक ही था, जिसका नाम था पाई से पाई दया सिंह, पहला प्यारा। उसको सब कुछ गुरु गोविंद सिंह महाराज ने दे दिया। कोई ऐसा प्यारा बनो भाई, तो हजूर कहते हैं जिस पर ईश्वर की कृपा होती है। कृपा करे जिस प्राण पर दाता, सोई संत गुण गावे। प्रेम भगत ता का मन लीना, आदि प्रेम में उसका मन खत्म हो जाए। प्रेम भक्ति ऐसी मन में आए कि मन खत्म हो जाए, मन खत्म हो जाए, मन खत्म हो जाए, मन का स्वरूप ना रहे। मन में ही तो होता है, मैं तालब इलम हूं, मैं अहंकारी हूं, ये मेरी मन की बातें, मैंने आपसे कहा कि मैं एमए पढ़ा हूं, मैं भक्ति कर रहा हूं, ये मेरा मन बोल रहा था। इस मन को निकाल दीजिए, मैं कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं हूं, मैं एक ही बात पढ़ा हूं, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, एक ही बात पढ़ा हूं, दिन रात एक ही आवाज मेरे मन में आती है, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, बस एक ही बात पढ़ा हूं।
वो बातें सिर्फ आपको वाहेगुरु नाम पर लगाने वाली बातें थी, उसकी कोई जरूरत कहने की नहीं थी। कहने की बात तो एक ही है कि वाहेगुरु नाम श्रेष्ठ है, उसको पकड़िए। प्रेम भगत ताका मन लेना, प्रेम भगत ताका मन लेना, ऐसी प्रेमा भक्ति में आए कि छूट जाए कि मैं कौन हूं, अपना नाम भूल जाए, अपना घर भी भूल जाए। गुरु नानक जी के पास गुरु अंगद साहब आए, जिसका नाम लेना था। 7 वर्ष गुरु नानक के चरणों में रहे, बहुत अमीर थे, बच्चों वाले थे, किसी बात की कमी नहीं थी। ऐसा गुरु नानक के चरणों में बैठे दिन और रात, भूल गए घर जाना। घर से तो देवी का दर्शन करने के लिए आए थे, बच्चे इंतजार कर रहे थे, वापस नहीं आए। वापस कहाँ आना था, वो तो इस जगह चले गए जहां जाकर को वापस आता ही नहीं, वो तो गुरु नानक में समा गए। अब गुरु नानक सोचने लगे कि इसने घर जाना है, बच्चे याद करते हैं। पूछने लगे, लेना तूने घर नहीं जाना भाई अपने वापस, तेरे बच्चे याद करते हैं, बीवी याद करती है, तेरा दुकानदारा है। तो आंखों में आंसू आ गया, हाथ जोड़ लिए, कहने लगे, गुरु नानक मेरी दुकानदारी छूट गई, अब मैं तो तेरा हो गया। ना मेरा को बच्चा है, ना मेरी को बीवी है, ना मेरा को मकान है, ना मेरी कोई सौदागरी है, ना दुकानदारी है। मेरा तो घर भी तू है, मेरा पिता भी तू है, मेरी माँ भी तू है, मेरा मान भी तू है, सम्मान भी तू है, मेरा जीवन भी तू है। जो आनंद मैंने तेरे चरणों में बैठकर पाया है, उस आनंद ने मुझे सब कुछ बुला दिया है। तो भक्ति करे कोई सूरमा, आपा मन का खोए। भक्ति करनी सूरमों का काम है, बहादुरों का काम है। जैसे फौज में सभी सिपाही होते हैं, जनरल कोई कोई होता है। फौज में सभी सिपाही होते हैं लेकिन जनरल कोई कोई होता है। मैंने अपनी आंखों से जनरल करियप्पा को देखा है। अरे जो उसकी आंखों में तेज मैंने देखा है, बाद में मैंने किसी जनरल में नहीं देखा। कुल्लू को देखा है, कुलवंत सिंह लेफ्टिनेंट जनरल को, विक्रम सिंह को देखा है, वो तेज नहीं देखा। ये बड़े बड़े शरीर ऊंचे वाले थे, विक्रम सिंह तो बहुत ही ऊंचे थे, लेकिन जो तेज जनरल करियप्पा की आंखों में मैंने देखा है, वो किसी और जन्म में नहीं। तो सिपाही तो सभी होते हैं, तो जनरल कोई कोई होता है, भक्ति तो सभी करते हैं। भक्ति पूरी किसी किसी की होती है, जिसकी पूरी हो जाती है उसकी आंखों में तेज होता है। तेज होता है राम नाम का, राम नाम का तेज होता है। तो ऐसी भक्ति कीजिए, प्रेम भगत ताका मन लीना, मन राम राम राम राम बोलता, राम का रूप हो गया। अरे मीराबाई को देखा है, मीराबाई कहती थी मैं ही कृष्ण हूं। दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ मेडिटेशन इन द लाइफ ऑफ मीराबाई। मीरा कहती थी मैं ही कृष्ण हूं। हीर ने भी ऐसा कहा है, रांझा रांझा कर दीनी मैं आप पे रांझा होई। ये हीर के शब्द है, हीर रांझे को प्यार करती थी, कहती मैं हीर नहीं रहेगी। रांझा रांझा कर दीनी मैं आप पे रांझा होई, सदो नहीं मनती दो रांझा हीर ना आखो कोई। कृष्ण कृष्ण करती वो कृष्ण हो गई, मीरा ना रही। तो शिष्य क्या है, अब जब श्री लैणा जी गुरु नानक करते हुए जब गुरु नानक हो गए, तो गुरु नानक देव जी ने जब ये बात सुनी कि अब ये लैणा मेरे लिए ही रह गया है, तो उसको कह दिया, बेटा तू मेरा अंग हो गया, यू आर दी पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई बॉडी। जस्ट स्पीक गुरु नानक टू लैणा, आज से तुम अंगद हो गए। अरे अंगद बनो, गुरु गोविंद सिंह के अंग बन जाओ, कुछ तो बनो, चाहे पैर का अंगूठा ही बनो, कुछ तो बनो। अगर सिर नहीं बन सकते, आंख नहीं बन सकते, तो पैर का अंगूठा ही बनो, कोई हड्डी बन जाओ, कुछ तो गुरु का अंग बनो। ये सीखी है, ऐसे नहीं है कि हमने अमृत छक लिया हम गुरु वाले हैं, ऐसे नहीं है। गुरु का अंग बन जाओ, लहना बन गया गुरु ने बनाया, भाई दया सिंह बन गया गुरु ने बनाया, मंज बन गया गुरु ने बनाया,
जॉन बन गया, ईसा ने बनाया, मुराद बन गया, मोहम्मद ने बनाया। कौन थे भाई हनुमान? एक वजीरी थे, ज्ञानवानी थे, वो भक्त बन गए, राम बन गए। किसने बनाया? स्वामी राम ने बनाया। इसलिए गुरु के अंग बनो, ये भक्ति का मंजिल है, आखिर है। गुरु गुरु करते गुरु के रूप में ढल जाओ, बाकी कुछ ना रहे। कौन माँ प्यो, कौन स्त्री, कौन बच्चा? गुरु नानक, अब तो तू ही मेरा है। तू मेरा पिता, तू मेरा माता, तू मेरा बंधव, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा, सबनी छाई ता भव केहा खड़ा जियो। आठ पैर हर का जस रमणा, बिखे ठगौरी लाथी। जब वाहिगुरु का नाम मंदिर में आ जाता है ना, फिर तो आवाज सुननी होती है, बोलना नहीं होता, सुनना ही होता है। सुनना दो प्रकार का होता है, ध्यान रखना। सिखों का सुनना और है, भक्तों का और है। सिखों का सुनना है अपना बोला हुआ सुनना, ये सिखों का सुनना है। ये पहली स्टेज है मेडिटेशन में, इसको कहते हैं विकल्प समाधि। अपना बोल नहीं सुनना, वाहिगुरु मैंने बोला ना, मैं अपना ही बोला सुना हुआ, ये है मेरी पहली स्टेज भक्ति की। फाइनल स्टेज में क्या है? गुरु बोले। चकवी दरिया के एक तरफ बोलती है, चकवे का दूसरा रूप दरिया की दूसरी तरफ बोलता है। एक तरफ शिष्य बोलता है वाहिगुरु, दूसरी तरफ गुरु बोलता है वाहिगुरु। उस आवाज को पकड़ता है और अपनी कृपा करता है कि मेरा शिष्य को मुझे बुला रहा है। गुरु सूक्ष्म में बोलकर उस शिष्य के हृदय में चला जाता है। ये भक्ति है। शिष्य और गुरु का आपस में ताना बाना हो जाता है। जब ताना बाना एक हो जाए क्या बनता है? उसका नाम कपड़ा दिया जाता है। जब ईश्वर का, जीव का, ब्रह्म का ताना बाना एक हो जाए तो फिर हम उसे क्या कहते हैं? फिर हम उसे कहते हैं कि ये भक्त है, ये प्रभु प्यारा है, ये कोई संत है, या फिर उर्दू में कहते हैं ये कोई दीवाना है, मस्ताना जिसे कहते हैं, ये कोई दीवाना है, या तो दीवाना हंसे, या जिसे खुदा है तू तौफीक दे, वरना इस दुनिया में मुस्कुराता है कौन। ए वाहिगुरु, या तो मस्ती में वो आता है जिसे तू ताकत देता है, या फिर ये है कि जिसे भगवान ने पहले से दी रखी है, वरना इस दुनिया में तू कहने वाला कौन है। बात यह है सत्संगत कि आप वाहिगुरु नाम जपिए, अपना बोला हुआ भी सुनिए, ये पहली स्टेज है, लेकिन सुनते सुनते गुरु वचन भी बोलिए। मुझे याद है कि वाहिगुरु नाम गुरु नानक ने एक दफा उचारा था। वाहिगुरु नाम श्री लैणा जी को जब अंगद बनाया तो उसके माथे पर हाथ रखकर गुरु नानक जी ने वाहिगुरु नाम बोल दिया और कह दिया कि आज से तू मेरा अंग हो गया, आज से तू और मैं एक हो गए, तेरे और मेरे में कोई अंतर नहीं रहा। और फिर एक काम गुरु नानक जी ने और किया जो कभी किसी गुरु ने नहीं किया, वो ये काम किया कि गुरु नानक जी ने श्री लैणा जी को मत्था टेक दिया कि आज के बाद तू ही नानक है, आज के बाद तू ही नानक है, मैं तेरे पास आया करूंगा, दुनिया तेरे पास आएगी, और ये वाहिगुरु मंत्र जो मैंने तुम्हें दिया है, रे ये राम नाम है, इसको अपने मन में संभाले रखना, इसकी बदौलत सब सिक्खी आबाद हो जाएगी। तो आज जिस रंग में हम बैठे हैं ये सब गुरु नानक जी की बख्शिश है, गुरु नानक जी की मेहर है। आप ऐसा शिष्य बनिए कि एक वक्त वो आए कि गुरु नानक आप अपनी रचना से वाहिगुरु नाम आपको दें, और यही नाम की दौलत है, इसी को राम नाम कहते हैं। राम का नाम रस इसी को कहते हैं, और साहिब दशम पातशाह ने इसी को आबे यात और अमृत रस कहा है।
इसलिए वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु बोलकर अपना बोला हुआ भी सुनिए, फिर किसी संत का बोला हुआ सुनिए जो अपने से श्रेष्ठ होता है। अगर कोई ब्रह्म ज्ञानी संत बोले वाहेगुरु वाहेगुरु तो वो अपने बोले से श्रेष्ठ होता है। संत के बाद फिर वाहेगुरु बोलते हैं, और जब वाहेगुरु बोलते हैं तो नाम की दौलत से आप लबरेज हो जाओगे, आप में इतनी शक्ति आ जाएगी कि आप भगवान का ही स्वरूप हो जाओगे। तू तो करता तू भया मुझ में रही ना हूं, जब आपा पर का मिट गया जत देखा तत तू। आठ पैर हर का जस रवना दिखे ठगौरी लाथी, दिखे ठगौरी लाथी करते है जब राम नाम की ताकत अंदर आ जाती है फिर माया उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। राम नाम का लेप मन में हो जाता है और फिर ये भाव सागर में जीव डूब नहीं सकता, वो जीवंदिया ही मुक्ति पद को प्राप्त हो गया। संग मिलाए लिया मेरे करते संत साध पहे साथी, अरे कर्ता पुरुष ने संग मिला लिया, अपने रूप में तब्दील कर लिया, दोनों एक हो गए, तो फिर संगत कैसी बनी? संगत संतों की बन गई, गुरु के प्यारों की बन गई, साधु जनों की बन गई। संत तो वो होते हैं जिनको आत्मा का ज्ञान होता है, साधु लोग वो होते हैं जो साधना करते हैं, दोनों ही बड़े होते हैं। साधु वो होते हैं जो अपने आप का त्याग करके भजन करते हैं, और संत वो हो जाते हैं जिन्होंने भजन करके एक मंजिल को प्राप्त कर लिया, वो साथी बन गए। परिवार किसका बन गया? परिवार संतों का बन गया, साधुओं का बन गया, प्यारियों का बन गया, गुरसिखों का बन गया, जिसको गुरु की संगत भी कहते हैं। जो सतगुरु शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवन त्रिग जीवास, जो सतगुरु की शरण में नहीं आए और ऐसे सदगुरु के बनाए हुए भक्तों की संगत में जो नहीं बैठे, गुरु जी कहते हैं उसके जीवन पर ही धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। कर गैली ने सरबस दीने आपे आप मिलाया, कर गहली ने, कर मैंने हाथ, गह मैंने अपना हाथ फैलाकर मुझको अपनी गोद में बिठा लिया, मुझको अपना बना लिया। कर गैली ने श्री लैणा जी को गुरु नानक ने अपना हाथ फैलाकर अपनी गोद में बिठा लिया, सरबस दीन ने सब कुछ दे दिया, बकाया कुछ नहीं रखा। जैसे बाप अपने इकलौते बच्चे को सब कुछ दे देता है, इस तरह गुरु जब दौलत देता है नाम की तो सब कुछ दे देता है। सरबस दीन ने कर गैली ने सरबस दीन ने आप पे आप मिलाया, मैं उसका था इसलिए उसने मुझे अपना समझ कर मिला लिया, मैंने कुछ नहीं किया। जैसे एक छोटा सा बच्चा क्या करता है? कुछ नहीं करता, वो तो सिर्फ चिल्लाता है, रोता है। कई बच्चे तो रोते भी नहीं है, माँ अपने पास आती है, उसे उठाती है, दूध देती है, कपड़ा बलती है, उसको श्रृंगार देती है, अपने गोद में लगा लेती है, सब कुछ देती है, बच्चा तो कुछ भी नहीं करता। एक स्टेज भक्ति की ये है कि भक्ति करने वाला कुछ नहीं करता, जो कुछ करता है फिर गुरु ही गुरु करता है। गुर करता गुर करने जोग, गुर परमेश्वर है पी हो, कहो नानक प्रभ यह जनाई, गुर बिन भक्त न पाइये भाई। जो कुछ करने वाला है गुरु ही करता है, गुरु ही करने योग है, गुरु ही सर्व कला सम्राट है। भक्त को तो सिर्फ गुरु के चरणों में आकर भक्ति में लीन होकर अपना आप गंवा देना चाहिए। कर गैली ने सरबस दीने आपे आप मिलाया, कहो नानक सर्व थोक पूरन पूरा सतगुरु पाया। गुरु अर्जन साहब जी कहते हैं जिसने अपने जीवन में पूरे सतगुरु की गोद को प्राप्त कर लिया है वो बहुत ऊंचे भागों वाला है, उसने दुनिया में सब कुछ पा लिया है, लोक भी सुखी हो गया, उसका परलोक भी सुखी हो गया। जिन्नी नाम ते आया गए मुसक्कत खाल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल।
वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की।

नाम है जिसनों बख्श ले मेरे प्यारे सो जस तेरा गावे रहाओ। तू पारो स्वामी मेरा संता परवासा तेरा नानक प्रभ शरणाई मुख निंदक कै छाई। सोरठ महला पंजवा आगे सुख मेरे मीता पाछे आनंद प्रभ कीता परमेश्वर बनत बनाई फिर डोलत कथु नाही। साचे साहिब सिउ मन मानिया हर सर्व निरंतर जानिया रहाओ। सब जी तेरे दयाला अपने भगत करें प्रतपाला अचरज तेरी वड्याई नित नानक नाम त्याई। सोरठ महला पंजवा नाल नारायण मेरे जमदूत ना आवे नेरे कंठ लाए प्रभ राखे सतगुर की सच साखे। गुर पूरे पूरी कीती दुश्मन मार विडारे सगले दास को सुमत दीती रहाओ। प्रभ सगले थान वसाए सुख शांत फिर आए नानक प्रभ शरणाए जिन सगले रोग मिटाए। सोरठ महला पंजवा सर्व सुखा का दाता सतगुर ताकी सरनी पाई है दर्शन पे तत होत आनंदा दुख गया हर गाई है। हर रस पी वो भाई नाम जपो नामो आराधो गुर पूरे की शरण आई रहाओ। तिसे प्राप्त तो जिस तुर लिखिया सोई पूरन भाई नानक की बेनंती प्रभ जी नाम रहा निवलाई। सोरठ महला पंजवा करन करावन हर अंतर जामी जन अपने की राख है जय जयकार होत जग पीतर शब्द गुरु रस चाखे। प्रभ जी तेरी ओट गुसाई तू समरथ शरण का दाता आठ पहर तुम त्याई रहाओ। जो जन भजन करे प्रभ तेरा किसे अंदेसा नाही सतगुर चरण लगे पौ मिटिया हर गुण गाए मन माही। सुख सहज आनंद कनेरे सतगुर दिया दिलासा जिन कर आए शोभा सेती पूरन होई आसा। पूरा गुरे पूरी मत जा की पूरन प्रभ के कामा गुर चरनी लाग तरयो पव सागर जप नानक हर हर नामा। सोरठ महला पंजवा पयो कृपाल दीन दुख पंजन आपे सब विथाटी खिन में राख लियो जन अपना गुर पूरे बेड़ी काटी। मेरे मन गुर गोविंद सद त्याई है सगल कलेश मिटै स्तंते मन चिंदिया फल पाई है रहाओ। जी जंत जाके सब कीने प्रभ ऊंचा अगम अपारा साध संग नानक नाम ते आया मुख उजल पै दरबारा। सोरठ महला पंजवा सिमरो अपना साई दिन सरैन सद त्याई हाथ दे जिन राखे हर नाम महारस चाखे। अपने गुरु ऊपर कुर्बान पय कृपाल पूरन प्रवदाते जी होए मेहरवान रहाओ। नानक जन शरणाई जिन पूरन पैज रखाई सगले दुख मिटाई सुख पुंचो मेरे पाई। सोरठ महला पंजवा सुनो बिनंती ठाकुर मेरे जी जंत तेरे तारे राख।

स्वामी बंधन काट सवारे पैर सिर पाओ सेवक जन मेले नानक प्रगट पहारे। छोरठ महला पंजवा जी जंत सब वस्तर दीने सेवक सब दरबारे अंगीकार कियो प्रभ अपने पावनिध पार उतारे। संतन के कार्य सगल सवारे दीन दयाल कृपाल कृपानिध पूरन खसम हमारे रहाओ। आओ बैठ आदर सब छाई पून न कतहू बाता भगत सिर पाओ दियो जने अपने प्रताप नानक प्रभ जाता। सोरठ महला नावा एक ओंकार सतगुर प्रसाद रे मन राम स्यों कर प्रीत श्रवण गोविंद गुण सुनो हर गाओ रखना गीत रहाओ। कर साध संगत सिमर मादो होहे पतत पुनीत काल ब्याल ज्यो परयो डोले मुख पसारे मीत। आज काल पुन तोहे ग्रस है समझ राखो चीत कहे नानक राम भजले जात अवसर गीत। सोरठ महला नाम मन की मन ही माहे रही ना हर पजे ना तीर्थ सेवे चोटी काल गही राव। दारा मीत पूत रथ संपत तन पूरन सब मही अवर सगल मिथ्या ए जानो भजन राम को सही। फिरत फिरत बहुते जुग हारयो मानस दे लही नानक कहत मिलन की बरिया

रच्यो राम भगत नह कीनी रहाओ। मुकत पंथ जान्यो तैनाहिन तन जोड़न को भाया अंत संग काहू नहीं जीना बिरथा आप बंदाया। ना हर पज्यो ना गुरजन सेव्यो न उपजो कछ ज्ञाना कट ही माहे निरंजन तेरे तै खोजत उद्याना। बहुत जन्म परमत तै हार्यो अस्थिर मत नहीं पाई मानस दे पाए पद हर पज नानक बात बताई। सोरठ महला नावा मन रे प्रभ की शरण विचारो जेह सिमरत गनकासी उदरी ताको जसपुर धारो रहाओ। हटल भयो त्रू जाके सिमरन हर निरपै पद पाया दुख हरता ये विद को स्वामी तै काहे बिसराया। जब ही शरण गई कृपा निद गज ग्रह ते टूटा महिमा नाम कहां लो वरनो राम कहत बंधन ते टूटा। अजामल पापी जग जाने निमख माहे निस्तारा नानक कहत चेत चिंता मन तै भी उतरह पारा। सोरठ महला नामा प्राणी कौन उपाओ करे जाते भगत राम की पावे जम को त्रास हरे रहाओ। कौन कर्म विद्या कहु कैसी

जब ही निरतन देखो नर को संग सार सब पागे। कहो कहा गया मन बौरे को इनसो नेहो लगायो। दीना नाथ सकल पै पंजन जसता को बिसरायो। स्वान पूछ ज्यो पयो ना सूदो बहुत जतन मैं कीनो। नानक लाज बिरद की राखो नाम तुहारो लीनो। सोरट मैला नावा मन रे गयो ना गुरु उपदेश कहां पयो जो मूड मुडायो। पगवो कीनो पेश रहाओ साथ छोड़ के चूठे लाग्यो। जन्म आकार खोयो कर पर पंच उदर निज पोखियो। पस की न्यायी सोयो राम भजन की गत नहीं जानी माया हाथ बिकाना। उर्ज रहो बिखियन संग बौरा नाम रतन बिसराना। रहो अचेत ना चेत्यो गोविंद बिरसा औद सिरानी। कहो नानक हर बिरद पछानो फूले सदा प्राणी। सोरठ महला नावा जो नर दुख में दुख नहीं माने सुख सने अर पै नहीं जाते। कंचन माटी माने रहाओ नह निंदिया नह उस्तक जाके। लोभ मोह अभिमाना हर शोभ से रह न्यारो नाह मान अपमाना। आशा मनसा सगल से आ गए जग से रह निराशा। काम क्रोध जे परसे नाहिन तेह कट ब्रह्म निवासा। गुर कृपा जे नरकों की नी तेह एह जुगत पछानी। नानक लीन पयो गोविंद स्यों ज्यो पानी संग पानी। सोरठ महला नावा प्रीतम जान ले हो मन माही अपने सुख स्यों ही जग पांदे हो। तो काहू को ना ही रहो सुख में आन बहुत मिल बैठक। रह चहु जिसके रह विपत परी सब ही संसादत को ना आवत ने रह। कर की नार बहुत हित जांस्यो सदा रहत संग लागी। जब ही हम तजी एह काया प्रेत प्रेत कर पागी। ए विद को व्यवहार बनयो है जांस्यो न्यो लगायो। अंत बार नानक बिन हर जी को काम ना आयो। सोरठ महला पहला कर पहला अष्टपदियां चौतुकी एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दुबदा ना पड़ो हर बिन होर ना पूजो। मरे मसान ना जाई तृष्णा रात ना पर कर जावा।

मत साई। मन बैराग रखो बैरागी, शब्द मन दे दिया मेरी माई, अंतर जोत निरंतर बाणी, साचे साहिब सिओ लिव लाई।

कुआ ना डोले पावत वर जरहावे सहजे माता सदा रंग राता साचे के गुण गावे मनुआ पौन बिंद सुखवासी नाम वसै सुख पाई जेबा नेत्र सोत्र सचराते जल बूझी तुझे बुझाई आस निरास रह बैरागी निज कर तारी लाई पिख्या नाम रजे संतोखी अमृत सहज पियाई दुबदा विच बैराग न होवी जब लग दूजी राई सब जग तेरा तू एको दाता हवर न दूजा भाई मनमुख जंत दुख सदा निवासी गुरमुख दे वड्याई अपर अपार अगम अगोचर कहने कीम न पाई सुन समाद महापरमार्थ तीन पवन पत नामं मस्तक लेख जिया जग जोनी सिर सिर लेख सहामं कर्म सो कर्म कराए आपे आपे पगत दिरामं मन मुख झूठ लह पैमान आपे ज्ञान अगामं जिन चाख्या से साध जान जो गूंगे मिठियाई अकथे का क्या कथिय पाई चालो सदा रजाई गुरदाता मेले तामत होवे निगुरे मत न काई ज्यो चलाए त्यों चाले पाई और क्या को करे चित्राई एक परम पुलाए एक पगती राते तेरा खेल अपारा जित तुद लाए तेहा फल पाया तू हुकम चलावन हारा।

गगनंतरवासिया गुण प्रगासिया गुण में ज्ञान त्यान नाम मन पावे कहे कहावे तत्तो तत्व खान शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा बिन शब्द जग बौरान पूरा बैरागी सह सुभागी सच नानक मन मान सूरठ महला पहला तितुकी आशा मन सा बंदनी पाई कर्म तर्म बंद सारी पाप पुन जग जाया पाई बिन से नाम विसारी एह माया जग मोह।

मेरे प्रभ सालान से पले प्यारे सब जरते रंग होए किसकी संगत जे मिले प्यारे रस ले तत विलोए पत परवाना साचा प्यारे नाम सच्चा निशान आया लिख ले जावना प्यारे हुक्मी हुक्म पछाण गुरबिन हुक्म ना बूझिए प्यारे साचे साचा तान हुक्मे अंदर निम्या प्यारे हुक्मे उदर मझार हुक्मे अंदर जम्या प्यारे ऊदो सिर कै भार गुरमुख दरगह जानिए प्यारे चले कारज सार हुक्मे अंदर आया प्यारे।

दुत की तू गुण दातो निर्मलो, तू गुण दातो निर्मलो पाई, निर्मल ना मन होए हम अपराधी निर्गुणे पाई, तुझ ही ते गुण सोए। मेरे प्रीतमा तू करता करवेक, हौ पापी पाखंडिया पाई, मन तन नाम विशेख रहाओ, बिख माया चित मोया पाई, चतुराई पथ खोए, चित में ठाकुर सच वसै पाई, जे गुर ज्ञान समोए। रूड़ो रूड़ो आखिए पाई, रूड़ो लाल चलूल, जे मन हर्ष्यों बैरागी है पाई, डर कर साच अकूल। पाताली आकाश तू पाई, कर कर तू गुण ज्ञान, गुर मिले सुख पाया पाई, चूका मनो गुमान। जल मल काया मांझिए पाई, पी मैला तन होए, ज्ञान महारस नाइए पाई, मन तन निर्मल होए।

लागी गुर कै सहज सुभाए मन मुखा नु प्रतीत न आवे अंतर लोग सुआओ गुरमुख हृदय शब्द न भेजो हर नाम न लागा पाओ पूर कपट पाज लह जाती मन मुक्ति का अलाओ भगता विच आप वरदा प्रभ जी भगती हूं तू जाता माया

गुरु के शब्द पछाता अचिंत काम करें प्रभु तिनके, जिन हर का नाम प्यारा गुरु प्रसाद सदा मन वसिया सब काज सवारण हारा। ओना की रीस करे सो विगुते जिन हर प्रभ है रखवारा, बिन सतगुरु सेवे किने ना पाया मन मुख पौ के मुए बिल लाई, आवे जावे ठौर न पावे दुख में दुख समाई। गुरमुख होवे सो अमृत पीवे सहजे साज समाई, बिन सतगुरु सेवे जन्म ना छोड़े जे अनेक कर्म करे अधिकाई। वेद पढ़े ते वाद वखाणे बिन हर पत गवाई, सच्चा सतगुर साची जिस बाणी पज छूटे गुर शरणाई। जिन हर मन वसिया से दर साचे दर साचे सचियारा, ओना दी शोभा जुग जुग होई कोई न मेटन हारा। नानक तिनकै सद बलिहार है जिन हर राख्या उधारा, सोरठ मैला तीजा गुप्त की निगुणिया नो आपे बख्श ले पाई। सतगुर की सेवा लाए सतगुर की सेवा उत्तम है पाई, राम नाम चित लाए हर जियो आपे बख्श मिलाए। गुणहीन हम अपराधी पाई पूरे सतगुर लय लाए रहा, कौन कौन अपराधी बख्शियन प्यारे साचे शब्द विचार, पौजल पार उतारन पाई सतगुर बेड़े चार। मनूरे ते कंचन भय भाई गुर पारस मेल मिलाए, आप तोड़ नाव मन वसिया पाई ज्योति ज्योत मिलाए। हौवारी हौवारने पाई सतगुर को सद बलिहारे, जाओ नाम निधान जिन विपता पाई। गुरमत सहज समाओ गुर बिन सहज ना उपजे पाई, पूछो ज्ञानिया जाए सतगुर की सेवा सदा कर पाई, विच्चों आप गवाए। गुरमती पौ उपजे पाई पौ करनी सच पार, प्रेम पदार्थ पाई है पाई सच नाम आधार। जो सतगुर सेवे अपना पाई तिनके हो लागो पाए, जन्म सवारी अपना पाई कुल भी लई बख्शाए। सच बाणी सच शब्द है पाई गुर कृपा ते होए, नानक नाम हर मन वसै पाई किस बिघन न लागे कोए। सोरठ मैला तीजा हर जियो शब्दे जापदा पाई, पूरे पाग मिलाए सदा सुख सुहागनी पाई, अंगिन रतिया रंग लाए। हर जी तू आपे रंग चढ़ाए, गावो गावो रंग राते हो पाई हर सेती रंग लाए रहाओ। गुर की तार कमावने पाई आप छोड़ चित लाए, सदा सहज फिर दुख ना लग गई पाई। हर आप वसे मन आए फिर का हुक्म ना जाने पाई, साफ लखनी कुनार मन हथकार कमावनी पाई। बिन नावे कूड़ियार से गावे जिन मस्तक पाग है पाई, पाए सच्चे बैराग अंगिन राते गुण रवे पाई। निरपो गुर लिव लाग सबना मार जीवालदा पाई, सो सेवो दिन रात सो क्यों मनो विसारी है पाई, जिस दी वड्डी है दात। मन मुख मैली डुमनी पाई दरगे नाही थाओ, गुरमुख हो वै ता गुण रवे पाई मिल प्रीतम साथ समाओ। एक जन्म हर ना चेत्यो भाई क्या मोह देसी जाए, किड़ी पवंदी मोह आयोन पाई बिख्या नो लो भाई। नाम समाले सुख वसे भाई सदा सुख सांत शरीर, नानक नाम समाल तू पाई अपरंपर गुणी गहीर। सोरठ मैला पंजवा कर पहला अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सब जग जिने उपाया भाई करण कारण समरथ, जियो पिंड जिन साजिया पाई देकर अपनी वथ, किन कही है क्यों देखी है पाई करता एक अकथ। गुरु गोविंद सलाही है पाई जिससे जापे तत, मेरे मन जपिए हर भगवंता नाम दान दे जन अपने, दुख दर्द का हंता रहाओ जाके कर सब किछ है पाई। नौनिद परे पंडार जिसकी कीमत ना पवे पाई, ऊंचा अगमा पार जी जंत प्रतपालदा पाई नित नित करदा सार।
सतगुरु पूरा पेटिए पाई शब्द मिलावन हार। सच्चे चरण सरेविए पाई परम को होवे नास, मिल संत सवा मन मांझिए पाई हर कै नाम निवास। मिटे अंधेरा अज्ञानता पाई कमल होवे प्रगास, गुरु बचनी सुख उपजे पाई सब फल सतगुर पास। मेरा तेरा सोधिए पाई होइए सब की तूर, कट कट ब्रह्म पसारिया पाई देखे सुने हजूर। जित दिन विसरे पार ब्रह्म पाई तित दिन मरिए चूर, करण करावन समर्थो पाई सर्व कला भरपूर। प्रेम पदार्थ नाम है पाई माया मोह विनाश, तिस पावे ता मेल ले पाई हृदय नाम निवास। गुरमुख कमल प्रगासी है पाई हृदय होए प्रगास, प्रगट पया प्रताप प्रभ पाई मौलिया करत आकाश। गुरपूए संतो क्या पाई एनस लागा पाओ, रसना राम रवे सदा पाई साचा साध सुआओ। करनी सुन सुन जीविया पाई नेचल पाया थाओ, जिस प्रतीत ना आवे पाई सो जीड़ा जल जाओ। बहुगुण मेरे साहिब है पाई हौ किस पे बल जाओ, ओ निर्गुण यारे पालदा पाई देन थावे थाओ। रिजिक संभाहे सास सास पाई गूड़ा जाता नाओ, जिस गुर साचा पेटिए पाई पूरा तिस करमाओ। तिस बिन करी ना जीविए पाई सर्व कला भरपूर, सास विरास ना विसरे पाई पेखो सदा हजूर। साधु संग मिलाया पाई सर्व रहा भरपूर, जिना प्रीत ना लगिया पाई से नित नित मरदे चूर। अंचल लाए तराया पाई पौजल दुख संसार, कर कृपा नदर निहालिया पाई की तुन अंग अपार। मन तन शीतल होया पाई पौजल नाम आधार, नानक ते शरणागति पाई जे किल बिक काटनहार। सोरठ महला पंजवा। मात गर्भ दुख सागरो प्यारे तैं अपना नाम जपाया, बाहर काट बिख पसरिया प्यारे माया मोह वधाया। जिसनों की तो कर्म आप प्यारे तिस पूरा गुरु मिलाया, सो आरा दे सास सास प्यारे राम नाम निवलाया। मन तन तेरी टेक है प्यारे मन तन तेरी टेक, तुद बिन अवर ना करन हार प्यारे अंतर जामी एक रहाओ। कोट जन्म प्रम आया प्यारे अनक जोन दुख पाए, साचा साहे विसरिया प्यारे बहुती मिले सजाए। जिन पेटे पूरा सतगुरु प्यारे से लागे साचे नाए,

प्रियंगम सादे पंच जना स्यों संग ना छुटक्यो अधिक अंग बुध बादे प्यारे इन विद मिलन न जाई मैं किए करो अनेका हार पर स्वामी

हर स्यों संग न गया। राज लीला राजन की रचना करया हुकुम अफारा, सेज सोनी चंदन चोआ नरक पोर का द्वारा। हर कीरत साथ संगत है सिर कर मन कह कर्मा, कहो नानक किस पयो प्राप्त जिस पूर्व लिखे का लहना। तेरो सेवक ए रंग माता पयो कृपाल दीन दुख पंजन, हर हर कीर्तन ए मन राता रहाओ दूजा। राग सोरठ वार महले चौथे की एक ओंकार सतगुर प्रसाद, श्लोक महला पहला।

तैवसी सतगुर सेवन संग पर हर कपड़ जे फिर मिले खुशी रावे फिर संग सदा सिगारी नाव मन कदे न मैल पतंग देवर जेठ मोए दुख ससू का डर किस जे फिर पावे नानका कर्म मणि सब सच महला चौथा तोरठ ताम सुहावनी जा हर नाम टंडोले गुर पुरख मनावे अपना गुरमति हर हर बोले हर प्रेम कसाई दिन सरात हर रती हर रंग चोले हर जैसा पुरख न लभई सब देखिया जगत में टोले गुर सतगुर नाम दृढ़ाया मन अंत न काहू डोले जन नानक हर का दास है गुर सतगुर के गोल बोले पौड़ी तू आपे सिद्ध करता सृजन हारिया तुद आपे खेल रचाए तुद आप सवारिया दाता करता आप ओगन हारिया सब तेरा शब्द वरतै उपावन हारिया हौ गुरमुख सदा सलाही गुर को वारिया श्लोक महला तीजा हौ मैं जल से जल मोए प्रम आए दूजे भाए पूरे सतगुर राख लिए अपने पन्ने पाए ए जग जलता नदरी आया गुर कै शब्द सुभाए शब्द रते से शीतल भये नानक सच कमाए महला तीजा सफल्यो सतगुर सेव्या तन जन्म प्रवान जिना सतगुर जीवंदिया मोया ना विसरै सेई पुरख सुजान कुल उधारे आपना सो जन होवै प्रवान गुरमुख मोए जीवंदे प्रवान है मन मुख जन्म मराए नानक मोए ना आखिए जे गुर कै शब्द समाए पौड़ी हर पुरख निरंजन सेव हर नाम त्याई है सत्संगत साधु लग हर नाम समाई है हर तेरी वड्डी कार मैं मूर्ख लाई है हौ लाला बोला तुद मैं हुक्म फरमाई है हौ गुरमुख कार कमावा जे गुर समझाई है श्लोक महला तीजा पूरब लिखिया कमावना जे करते आप लिखियास मोठ गौली पाईन विसरिया गुण तास मत जानो जग जीवदा दूजे पाए मोयास जिनी गुरमुख नाम न चेत्यो से बहन न मिलनी पास दुख लागा बहु अतकणा पुत कलस ना सास कोई जास लोकां विच मुह काला होआ अंदर उबे सास मन मुखानो को ना विसही चुक गया वे सास नानक गुरमुखानो सुख अगला जिना अंतर नाम निवास महला तीजा से सैन से सज्जना जे गुरमुख मिले सुभाए सतगुर का पाणा अन दिन करे से सच रहे समाए दूजे पाए लगे सज्जन ना आखिए जे अभिमान करे वेकार मन मुख आप स्वार्थी कारज ना सके सवार नानक पूरब लिखिया कमावना कोई ना मेटन हार पौड़ी तुल आपे जगत उपाय कै आप खेल रचाया त्रै गुण आप सिरजिया माया मोह वधाया विच हो मैं लेखा मंगी है फिर आवे जाया जिना हर आप कृपा करे से गुर समझाया बलिहारी गुर अपने सदा सदा कुमाया श्लोक महला तीजा माया ममता मोहनी जिन विन दंता जग खाया मन मुखा दे गुरमुख उबरे जिनी सच नाम चित लाया बिन नामे जग कमला फिरे गुरमुख नदरी आया तंदा करतिया नेफल जन्म गवाया सुखदाता मन ना वसाया नानक नाम किना को मिलिया जिनको सुर लिख पाया महला तीजा कर ही मैं अमृत पर

मनमुखा साज न पाया, ज्यों कस्तूरी मृग न जाने परम दा परम पुलाया। अमृत ताजे बिक संग्रह करते आप सुआया, गुरमुख विरले सो जी पई तिना अंदर ब्रह्म दिखाया। तन मन शीतल होया, रसना हर साध आया, सबदे ही नाउ पुजे सबदे मेल मिलाया। बिन सबदे सब जग बोराना, बिरसा जन्म गवाया। अमृत एको शब्द है नानक गुरमुख पाया पौड़ी, सो हर पुरुष अगम है कहो कित विद पाई है। किस रूप न रेख अदृष्ट कहो जन क्यों त्याई है। निरंकार निरंजन हर अगम क्या कह गुण गाई है, जिस आप बुझाए आप सो हर मार्ग पाई है। गुर पूरे वे खा लिया गुर सेवा पाई है, श्लोक महला तीजा। ज्यो तन को लू पीड़िए रस न पोरी देहे, जियो वंजे चोखनी है सच्चे संदड़े ने। नानक मेल ना चुकई

नानक रंग ना उतरे ब्याह ना लगे के पौड़ी हर आप वरते आप हर आप बुलाएंदा हर आपे सृष्ट सवार सिर संदे लाएंदा इतना भगती लाए एक आप सुआएगा।

गुरु कौल हरि अमृत आरंभ दी गल नाल नाल तुरी जाने आखर तक तुरी जाने बेस आस्था दीवार दे चौवी छन चौवी संतां दे नाल पौड़ियां उन्हां दे नाल जुड़े हुए शलोक बेशक वख वख थावें वख वख समें रचे गए संत ते है नहीं सत पत्रे दी पौड़ियां जो असल वार दे रूप विच सन वखरियां नाल शलोक लाए गए सब कुछ वक्त वक्त गुरु अर्जुन साहब पातशाह जी दे वक्त कीर्तनी आस्था दी वार दा रूप प्रचारे हुकम होया पर एडी अच्छी गल है इनका कंसेप्ट दा आपस विच मेल ए साबित करदा है कि गुरु वक्त वक्त नहीं गुरु किसे समय दा पाबंद नहीं गुरु समय ते स्थान दे बंधन विच नहीं बंधन मुक्त है जिस समय स्थान दे बंधन विच होंदा एक समय स्थान दा बचन दूजे समय स्थान नाल की संबंध रखदा है अरे चौबीस श्लोक चौबी छन चौबी पौड़ियां नाल शलोक वक्त वक्त समय की रचना कंसेप्ट किवें आपस विच लड़ीवार बुनिया पे बेस विच भी यह गल है उत्थे हरि अमृत नाल लोयन भिजे ने सुरत भिजी लोयन सुरत करे सुरत भिजी हुण इत्थे गल आ गई हरि अमृत नाल देहुरी भिजी है देहुरी है कि देहुरी देहुरी आप कंसेप्ट है जे नू देहुरी आखी तो जे की है कर्म खेत्र इनू आपस में जोड़ के समझना जे की है कर्म खेत्र श्री गुरु ग्रंथ साहब ने बाणी में इस गल मान लिया कि शरीर कर्म खेत्र है

शरीर की कर्म धरती तो समय नाल रुत नाल जुग नाल इस कर्म धरती शरीर विच जेड़ा कर्मां दा बीज बीजेगा कंठे जिया बीजे सोलुने कर्मा संग रखे कर्म जड़े ने वो फसल जोड़ी फसल पैदा करेगा जे सवेर दे श्लोक वांगू हाँ दी फसल पैदा करेगा तो उन्दे विच कंडे ने ताकत हर रस साध ना जाने अगली लाइन पढ़ो ताकत हर रस साध ना जाने क्यों तिन अंतर कौमे कंडा कौ कंडा ये कंडे बीजेगा कंडे उगेंगे शरीर कर्म करती है एक तन जड़ा कर्म खेत्र है गुरु बाई में हो समय आख दिता कहने लगे अमल भी करना नहीं पे कहने लगी अमल कर धरती अमल कर धरती बीज समा कर कर्म धरती है अमल भी करना नहीं पे जो दे अमल में काव्य दे कर्म कल लगे कर्म खेतर धरती अमल तो तेन मिल गया कर्म खेतर तो मिल गया हूं एक ख्याल रखी पता ही इन्हें होमे ना बीज लई कंडे ना पैदा हो जान आज शब्द बीज भाव गुरु के बचन बीज तेरे कर्म गुरु के बचन प्रवेश कर अमल कर धरती बीज शब्दों का सच अमृत है सच की आग इसलिए नु आबे हजार कहते पानी दे कर्म धरती पानी दे सच का किसान बन पता ही फिर की पैदा होगा होए किसान ईमान जमाएगा बस इं धर्म पैदा होगा इं ईमान की फसल पैदा होगी जे हों बीज रही जाई तो कंधे पैदा कंधे पैदा होंगे जे बीजे सोलुने कर्मा संग रखे हूं मसला यह है कि जेहोरी कर्म खेतर है गुरु ने ख्याल दे दिता कहने गुरु को है हरी अमृत रहमत विच आया कि बख्शिश की उस हरी अमृत नाल मेरी देह भिव दिखती भाव हरी अमृत मेरे कर्मों में समा गया कर्म खेत्र है इसलिए जन्म नु मुखातिब करके आख्या कि तेन पता ही नहीं तू किस लिए आया क्योंकि आए का मतलब देह इसलिए गुरु ने आख्या

जिस दिन पटकना खत्म हो जाए, हरी अमृत नाल अंदर ते बाहर सिंधिया जाए, उस दिन हरी विच ते हरी जान विच कोई अंतर नहीं रहेगा।

जिनने इस सारा संसार सारी कुदरत साजी उसके नू इस सारे संसार का फिक्र है, इसलिए तू क्यों फिक्र करना है।

करके अभी महाबलीपुर में अभी संग्राम कर सकने, युद्ध कर सकने, इतों तक मजबूत इरादे नाल कर सकने कि साडे प्राण जड़े ने वो रण भूमि में ही खत्म होणगे, पिछ दे के नहीं आवणगे। गुरु ने पता जो उन्होंने की आख्या, कहने लगे मैं देखे ने जेड़े कर पर्वत पंथ हिले ना हिले, इस किस्म के मजबूत इरादियां वाले रण भूमि के योधे जेड़े कहंदे ने पर्वत नूं पहाड़ नूं खंभ लग के पहाड़ अपना टिकाणा छड़ सकदा, किथे हट सकदा जो खंभ लग जाए, पर असीं नहीं हिलांगे, असीं पर्वत नालों मजबूत हां। कर पर्वत पंख हिले ना हिलेंगे, तोर अरीर मरोर मुवासन माते मतंगन मान मस्त मत हाथियां दे मान शक्ति तोड़ दिया, माते मतंगन मान मलेंगे। पर गुरु कहने नहीं, श्री पट श्री भगवान कृपा बनी त्याग जा।

है, केवल सच्चा कर्म ही कार्य करती है। जो जीवन के कर्म देहुरी जड़ी कर्म खेतर है उनके बच्चे सच नहीं समाया तो कुछ भी नहीं, सब मिथ्या है। कहने लगे निशान मोर वाली चीज, निशान वाली चीज जड़ी है वो केवल सच्चा कर्म, कर्म सच्चा निशान। कहने लगे जी फिर जे कर्म सच्चे तो बिना कुछ नहीं, जिन्नी देर कर्म विच देहुरी विच सच ना समाए बाकी सारे किते हुए जप तप संयम अधूरे ने, मिथ्या ने। फिर दसो जी सच कि मिले, सवाल पैदा हो गया सच कि मिले, सच कितों मिले ताकि जीवन के कर्म पवित्र हो जाए, देवरी पवित्र हो जाए, सच कितों मिले। पौड़ी आ गई, पौड़ी आई जवाब में

0: শান্ত পাখে চোখে পাখে শ্লোক পাখে শুনে দেবে না জুড়ে গেলে পৌড়িয়া বার নিতিনা দাস মেয়র কেন্দ্র
1: পৌড়ি সচ্চা সাহেব এক তু
0: जेड़ा सच्चा है उन्हें कोई सच होगा झूठे को सच कितों आएगा क्योंकि मेरा मालिक सच्चा साहब है इसलिए उन्हें खजाने में केवल केवल केवल सच है सच बता रहे हैं।

दर्शन देखे ज्यों बुलावा त्यों बोलहि स्वामी, कुदरत कवण हमारी, साध संग नानक जस गायो, जो प्रभु की अर्थ

लिखा हुई तो लिखी है, लिखा हुई विनाश। नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप, सला ही सला इति सुरत न पाइया, नदियां आतै वा पवे समुंद न जानिए। समुंद सा सुल्तान गिरहा सेती माल धन, गिड़ी तुल न होवनी जे तस्मनो न विसरे। अंत न सिरदी गण न अंत, अंत न करण देण न अंत, अंत न वेखण सुन न अंत, अंत न जापै गीता कार, अंत न जापै पारावार, अंत कारण गेते बिल लाही दागे।

कहते सतबोधनाथ कहते कहते देवी वेश कहते देवदान मन कहते कहते रतन संबंध कहतिया खाणी कहतिया बाणी कहते पात नरेंद कहतिया सुरती सेवक कहते नानक अंत नंत ज्ञान खंड वैंकन प्रचंड जिथे नाथ विनोद कूड आनंद शर्म खंड की बाणी रूप जिथे घाट कड़ी है बहुत अनूप ता किया गल्ला कथिया न जाहि जी को कह पिछे बसदाहि जिथे कड़ी है सुरत मत मन बुध जिथे कड़ी है सुरत सुरस दंकी शुद्ध कर्म खंड की बाणी जोर जिथे और न कोई होर जिथे जूत महाबल सूर जन्म राम रहा भरपूर तिथा है सीतो सीता मैं मा माही दाग रूप न कथने जाहि ना हो मरे न ठग जाहि जिनके राम बस मन माही तिथा है भगत बस के लोग आनंद सचा मन सोए सचखंड बस निरंकार गुर कर विख नदर नयाल तिथा है खंड मंडल पर पंड जे को कथा दंत न अंत तिथा लो लो आकार जब जो हुक्म तिवै दिवकार वेख विषय कर विचार नानक कथना करड़ा सार जात बहारा तीर जिसने यार हरण मत भी अधिया।

नीलानाद जय जाद जन्म वर्ण भूत वर्ण अगंज है पांज जूझ है झंझ है मी कर भी दंध मंध है निर्भूज है सूज है काल है जाल है अल्लाह जह अनंत महंत है अलीक है निर सरीक है निर्लंब है संभ है गम है जम है भूत है सूत है अलोक है शोक है कर्म है परम है अजीत है पीत है भाग है मान अनदान नीक है फरीक है भुजंग प्रयात शंग नमो सर्वमान्य सुमादीन दानी नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पावणे अनंगी अनाथे निरंगी परमाथे नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो दान ताने नमो नृत नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बद बादे अनंगी अनामे समाधि स्वरूपे प्रभंगी परमाथे समाधि प्रभूते कलंकंग बनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश ब्रह्म परम रूपे नमो योग योगेश ब्रह्म परम सिद्धे नमो राज राजेश ब्रह्म परम हृदय नमो सहस्रपाणी नमो अस्त्रमाणी नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेक्षीय परमीय भोगीय भुगते नमो योग योगेश ब्रह्म।

नमो मंत्र मंत्र नमो चंद्र चंद्र नम इष्टे इष्टे नमो चंद्र चंद्र सदा सचिदानंद सर्प प्रणासी अनुपे रूप समाज तुल्यवासी अजायब बुद्धि सदा सतता बुद्धता वृद्ध करता दूरदर्द अगंगो घरता परं परम परमेश्वरं प्रोषपालं सदा सर्वदा सतता तदयालं अशेदी अपेदी अनामंग कामंग समस्त ब्राजी समस्ता सतामंग तेरा जोर जा जरी शंब जले हैं सले हैं पीता वे हैं प्रभु आजुआ दे सब ऐस है भुजंग प्रयात शंब अगाधे अबाधे नंदी स्वरूप नमो सर्वमान्य समस्त दीन दाने नमास्तवं नरनाथे नमास्तवं परमाथे नमास्तवं गंजे नमास्तवं भंजे नमास्तवं काले नमास्तवं पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वभेषे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साहि नमो महामाय नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो शोक शोके नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतंग नमो सर्वपीतंग नमो सर्वज्ञानंग नमो परमतानंग नमो सर्वमंत्रंग नमो सर्वजंत्रंग नमो सर्वदृष्टंग नमो सर्वकृष्टंग नमो सर्वरंगे त्रिपंगीय नंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे जय बीजे स्मारतंग प्रसिजे कृपालंग स्वरूपे गुकर्मंग वृणासी सदा सर्वधार दिशनवासी जर पट शांत प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे जल भोगे जल राजे अटल साजे अखल धर्मंग लख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग बाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वं भूता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं देवं सर्वं काले सर्वं पाले रूहाल शांत दव प्रसाद आदि रूपन आदि मूर्त जोन पुरख पहारो सर्व मंत्र मान देव विवाद उदारो सर्व बालक सर्व कालको सर्व गोपन कालो जत्र तत्र विराजी अवधूत रूप प्रसाद नाम ठाम न जात जा कर रूप रंग न रेखो आदि पुरखदार मूर्त जो नाद सेखो देश और न पेश जा कर रूप रेख न राघु जत्र तत्र दिशा विशा होए फैलियो अनुराघु नाम का बीन बेख तो धामु न जाए सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मान तताहि एक मूर्धन एक दर्शन किन्द्र बने एक अखिल खिल अखिल अखिल ने अंत को ब्रेक देव एव न जानी जेब

लोक जावदान के बिखय जग जापि जय जयापु आद देवन आद मूर्त उथापि सब जयतापु परम रूप वनीत मूर्त पूर्ण पुरुख अपार सर्व विश्व रचियो सुयम भव करण मंजन हारु कालहीन कला संयुक्त काल पुरुष देश धर्म धाम सु परम रहत भूत लख भेष अंग राग न रंग जग जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमी गान सत एक पुरुख अवधूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आदि रूप असूत अंगहीन अपंग नातम एक पुरुख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व गोप्रत पार सर्वगंता सर्वहंता सर्वदेन पेखो सर्वशास्त्र न जानी जे रूप रंग अर देखो परम वेद ब्राह्मण जा कहे नेत भगत नेत कोट सिमरत सा पुराण शास्त्र न आवई बहुचित मद पार संत प्रसाद गुणगण उदार महिमा पार आसन भंग उपमान अंग अनुभव प्रकाश निर्दिन नाश अजन भाषान शाह राजन राजपानन पान देवान देव उपम महान इंद्रान इंद्र बालन बाल रंकान रंक कालन काल अनुभूत अंग अपाप अंग गदमित पार गुणगण उदार मुनगण प्रणाम निरपण्य काम आत दुत प्रचंड मित गद अखंड लिस्त कर्म दृष्ट धर्म सर्व प्रणाड्यान दंड बाटे जा श्री छंद दग प्रसाद गोविंदे मकंदे उदारिय पारे हरियं करियंद्र नामे कामे भुजंग प्रयाद छंद चतुर चक्र करता चतुर चक्र हरता चतुर चक्र दानी चतुर चक्र जाने चतुर चक्र वरती चतुर चक्र भरती चतुर चक्र पाले चतुर चक्र काले चतुर चक्र वासे चतुर चक्र वासे चतुर चक्र माने चतुर चक्र दाने जा श्री छंद न सत्र न मित्र न परमंग न पित्र न कर्मंग न काय जन्मंग अजाय अकान चित्र न मित्र पर पवित्र प्रतिशा दिशा दृशा कृश भगवती शांत प्रसाद काथ दे क्या सिज देश क्या बिज बेश क्या गंज कर्म क्या बज भरम क्या बिज लोक क्या दत सुख क्या अवधूत वर्ण क्या भूत करण क्या राजिंग प्रवाहेंगे धर्मंग तुझाएंगे अशोक वर्ण के सर्वा भरण के ब्राह्मण स्वरूप के अनुभव रूप के आद देव के आप के चतरंग महीना के कह दीना के रोजिर जा कर ही मेरे हा कह के बाग बया बैंक गय बुल गय बैंक आप बुल गुना के शाह नशाए के कारण को नंद है के रोजी रहन दें के राय के राज करीम है के गर्मंग करीम है के सर्वंग कलिया के सर्वंग दलिया के सर्वत्र माने के सर्वत्र दाने के सर्वत्र गावने के सर्वत्र भावने के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेष है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीना के सर्वत्र लीना के सर्वत्र जाओ के सर्वत्र पाओ के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेष है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र बाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र बेखी के सर्वत्र बेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र

प्रसाद करुणालय है, अर्कालय है, कल खंडन है, मह मंडन है, जगतेश्वर है, परमेश्वर है, काल कारण है, सर्ववारण है, त्रेत के धरण है, जग के करण है, मन मान्या है, जग जान्या है, सर्वं पर है, सर्वं कर है, सर्वपास है, सर्वनाश है, करुणा कर है, विश्वंभर है, सर्वेश्वर है, जगदेश्वर है, ब्रह्मांड से है, खल

ब्रह्मांड से अखल खंड से बरते पर हैं करुणा करें जपा जपा थपा थप है कृता कृता मृत अमृत है अमृत अमृत है मृत करुणा कृत है कृता कृता धरणी धृत है अमृतेश्वर है परमेश्वर है कृता कृत है अमृत अमृत है नर नायिका है खड़का है विश्वम पर है करुणालय है नृप नायिका है सर्पायिका है।

अनंगीयनाम मैत्रभंगीधर कालेनंग अनंगीय काम एक श्री छंद अजयालय भय पूजनाश अगंज पंज लख बख।

0: सजा प्रथम संसार आई का रूप अनुप स्वरूप रंग पहरा कोई भूपा
1: आंड जजे रज से तज कीनी उत पुज खान बहोर रज दीनी गौ फूल राजा वह बैठा गौ चमट पहु शंकर बैठा सगरी श्रेठ दगाए जाम पव आदि जुगाद स्वरूप सुजाम पव
0: अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उभार सिख संग रो दोष जदे

छड़ तू गुर का शब्द पछाण सतगुर अगे ढह पौ सब किछ जाने जान। आसा मनसा जलाई तू होए रहो मेहमान।

दुई कुदरत साजी है कर आसन डिठो चाओ। दाता करता आव तू तुस देवह करह पसाओ। तू जानोई सब सह दे लैसह जिंद कवाओ। कर आसन डिठो चाओ हर प्रेम बाणी मन मारिया। अणियाले अणिया राम राजे जिस लागी तीर प्रम की सो जाने जरिया। जीवन मुक्त सो आखिया मर जीवै मरिया। जन नानक सतगुर मेल हर जगद उत्तर तरिया। सलोक महला पहला सचे तेरे खंड सचे ब्रह्मांड सचे तेरे लो सचे आकार। सचे तेरे करणे सर्व विचार सचा तेरा अमर सचा दीवान। सचा तेरा हुक्म सचा फुरमान सचा तेरा कर्म सचा निशान। सचे तुद अख लख करोड़ सचा सब तान सचा सब जोर। सची तेरी सिफत सची साला सची तेरी कुदरत सचे पात साह। नानक सच ते आयन सच जो मर जमे सो कचन कच। महला पहला वड्डी वड्याई जां वड्डा नाओ। वड्डी वड्याई जां सच न आओ। वड्डी वड्याई जां नहीं चल थाओ। वड्डी वड्याई जाने आलाओ। वड्डी वड्याई बुझै सब भाओ। वड्डी वड्याई जां पुछ न दात। वड्डी वड्याई जां आपे आप। नानक कार न कथनी जाए कीता करना सर्व रजाए। महला दूजा इहो जग सचै की है कोठड़ी सचे का विच वास। इक ना हुक्म समाए लै इक ना हुक्मे करे विनाश। इक ना भाण कढ लै इक ना माया विच निवास। एव पे आख न जापई जे किसै आणे रास। नानक गुरमुख जानिया जा को आप करे प्रगास। पौड़ी नानक जी उपाय कै लिख नावै धर्म बहलिया। उथे सचे ही सच निबड़ै चुण वख कढे जजमलिया। थाव न पायन कूड़ियार मोह काल दोजक चालिया। तेरा नाए रत्ते से जिण गए हार गए से ठगण वालिया। लिख नावै धर्म बहलिया हम मूर्ख मुगद शरणागति। मिल गोविंद रंगा राम राजे गुरपूरा हर पाया हर भगत एक मंगा। मेरा मन तन शब्द विगासिया जप अनत तरंगा। मिल संत जना हर पाया नानक सतसंगा। सलोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नंगे फिरहे जंत। विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड है विडाणी। विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लगे है पुराणी। विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद राह। विस्माद नेड़ा विस्माद दूर विस्माद देखा हाजरा हजूर। देख विडान रहया विस्माद नानक बुझण पूरा भाग। महला पहला कुदरत दिसा कुदरत सुनिया कुदरत भाओ सुखसार। कुदरत पाताली आकाशी कुदरत सर्ब आकार। कुदरत वेद पुराण कतेबा कुदरत सर्ब विचार। कुदरत खाना पीना पहनण कुदरत सर्ब प्यार। कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहान। कुदरत निकिया कुदरत बदिया कुदरत मान अभिमान। कुदरत पौन पानी बै संतर कुदरत धरती खाक। सब तेरी कुदरत तू कादर करता पाकी नाई पाक। नानक हुक्म अंदर वेखै वरतै ताको ताक। पौड़ी आपी न भोग भोग कै होए पासमड़ पौर सधाया। वड्डा होवा दुनीदार गल संगल घत चलाया। अग्गै करणी कीरत वाची है बह लेखा कर समझाया। थाओ न होवी पाउंदी हुण सुनिया क्या रू आया। मन अंधा जन्म गवाया दीन दयाल सुन बेनती। हर प्रभ हर राया राम राजे हौ मांगो शरण हर नाम की। हर हर मुख पाया भगत वशल हर बिरद है हर लाज रखाया। जन नानक शरणागति हर नाम तराया। सलोक महला पहला भै विच पवन वह सदवाओ। भै विच चल लख दरियाओ। भै विच अग्न कढै वेगार। भै विच धरती दबी भार। भै विच इंद फिरै सिर भार। भै विच राजा धर्म द्वार। भै विच सूरज भै विच चंद कोह करोड़ी चलत नायंत। भै विच सिद्ध बुद्ध सुरनाथ। भै विच आडाणे आकाश। भै विच जोध महाबल सूर। भै विच आवह जावह पूर। सगलिया भौ लिखिया सिर लेख नानक निरभउ निरंकार। सच एक महला पहला नानक निरभउ निरंकार। होर केते राम रवाल केतिया कन कहानियां केते देद विचार। केते नचहि मंगते गिड़ मुड़ पूरह ताल। बाजारी बाजार मह आए कढहि बाजार। गावहि राजे राणिया बोलहि आल पताल। लख टकिया के

ब्रह्म ज्ञानी का सगल मन माहे ब्रह्म ज्ञानी का गौण जाना भेद ब्रह्म ज्ञानी का सदा आदेश ब्रह्म ज्ञानी।

अदाक्षर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी की नियत कौन बताना ब्रह्म ज्ञानी की जात ब्रह्म ज्ञानी जान ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सर्व श्रेष्ठ का करता ब्रह्म ज्ञानी सर जीरा नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सर ईश्वर हाथ ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी। श्लोक सुर तारा जो अंतर नाम सर्व में देखा परमान निमुख निमुख ठाकुर नमस्कार नानक ओ अपर्त सगल निस्तार अस पर मिटिया नाही रचना परत मन मह प्रीत निरंजन दर्श पर रूप न देखा मित्र साधु कहर संत संग निहित कर न सुना काहू की निंदा सब के जान आप सब मंदा गुर प्रसाद विद्या पर हर मन की वासना मन से कर इंद्रित पंच रूप से रहत नानक कोट मध्य कोई ऐसा अपर्श वैष्णव से जिस ईश्वर से प्रसन्न जितन की माया के हुए चिन्ह कर्म कर्त होगा निर्ल कर्म इस वैष्णव का निर्मल धर्म काल फल की इच्छा नहीं बाध्य केवल भगत कीर्तन संग्राज्य मानता न अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल आप जेड़ा अवरा नाम जपावा नानक ओ वैष्णव परम गावे भगवती भगवंत भगत कारंग सगल त्यागा दुष्ट का संग मन से जनता सगला धर्म कर पूजा सगल पार ब्रह्म पार संग पापा मल होगा इस भगवती की मत ऊतम होगा भगवंत की चहल करा नित नीत मनता ने अर्पा है विष्णु प्रीत हर के चरण हृदय बचावा नानक ऐसा भगवती भगवंत का उपावा है वो पंडित जो मन से बुद्ध है राम नाम आत्म में शुद्ध है राम नाम सार का पीर है उस पंडित का उपदेश जग जी है हर की कथा हृदय बतावा वो पंडित से जोन न आवा वेद पुराण सिमित बुद्ध है मूल सूक्ष्म में जान असूर चौ वर्णा कौ दे उपदेश नानक उस पंडित कौ सदा आदेश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान जौ वर्णा मह जप कोई नाम जो जो जप किसी जप हो हर संग पावा जान पोए कर कृपा अंतर और सहारा आस प्रेत मुग्ध पात्र चौतारा सर्व रोग का औषध नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहू जुग से चित न पाइया धर्म नानक तिस मिला जिस विद्या सुर कर्म जिसका मन पार ब्रह्म का निवास जिसका नाम सत रामदास आत्म राम तिस नगरी आया दास जतंतन पाए सिन पाया सदा नित्य नित्य हर जान तो दास दरगाह सर्वान अपने दास चौ आप कृपा कर इस दास चौ सब सूझी कर सगल संग आत्म उदास ऐसी जुगत नानक रामदास सब की आज्ञा आत्म हितावै जीवन मुक्त सोई सहावै ऐसा हर्ष तैसा उस सोग सदा आनंद सह नहीं दियोग ऐसा स्वर्ण तैसी उस माती ऐसा अमृत तैसी जित खाती ऐसा मान तैसा अभिमान तैसा रंग तैसा राजान जो बरसाए साई जुगत नानक ओह पुरुष सहिया जीवन मुक्त पार जम के सगले साओ जित जित करदा सा तैसा चिन्हनाओ अति कर्म करावन जोग प्रभु पावा सोई सुन होग पत्रु आप हो अंत तरंग दसे न जाए सार ब्रह्म के रंग जैसी मत गे तैसा प्रदास सार ब्रह्म करता अविनाश सदा सदा सदा दयाल सुंदर सुंदर नानक पै निहाल सलोक सोचित करा अनेक जन अंत न पारा वार नानक रचना प्रभु रची बहुत दे अंत प्रकार अस्त परि कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट भय की सवासी कई कोट वन प्रमह उदासी
कई कोट पेड़ के स्रोत, कई कोट चतुर होते, कई कोट आत्म ध्यान सहारा है, कई कोट नव काल बीत जा रहा है, कई कोट नवतन नाम से आवा है, नानक सत्य का अंत न पावा है, कई कोट पै अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट कृपन कठोर, कई कोट अभिज आत्म निकोर, कई कोट पर गर्व का हिरा है, कई कोट पर दुख न करा है, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट प्रदेश माहे, जित जित लावा चित चित लगना, नानक सत्य की जाना करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे राष्ट्र होगी, कई कोट पंखी तरफ हो जाए, कई कोट पात्र वृक्ष मिट जाए, कई कोट पवन पानी दर, कई कोट देश हुए मंडल, कई कोट सतियर सूर नक्षत्र, कई कोट देव दान इंद्र फिर छत्र, सगर समग्री अपना दीप दीप सहारा, नारक जिस जिस पारा तिर तिर निस्तार, कई कोट राजस्थान सात, कई कोट वेद पुराण सिमृत हर खास, कई कोट पीले रत्न समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट पीले फिर जीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण सीवे, कई कोट जक्ष किन्नर सुताच, कई कोट भूत प्रेत सूत्र मृदाच, सब से मेरा सब हूते दूर, नानक आप अलिप्त रहा भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नर्क स्वर्ग निवासी, कई कोट जन्म है जीवा है मरा है, कई कोट बहुत जोनी फिरा है, कई कोट भैसक रूखा है, कई कोट साधा थकता है, कई कोट किए हनुमंत, कई कोट माया महत्यंत, राजा पाना तह तह रखे, नानक सब किसे सब कह रखे, कई कोट सहे बहरा जी, राम नाम संग तन मिर्गा जी, कई कोट सब को सोजन से, आत्म है पार ब्रह्म हंस, कई कोट दर्शन का प्यास, जनका मेरे उपल अविनाश, कई कोट मंदा सत्संग, पार ब्रह्म तन लागा रंग, जनका हो आप से प्रसन्न, नानक से जन सदा सहन सहन, कई कोट खानी हर खंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड, कई कोट हुए अवतार, कई जुगत तीनों विस्तार, कई बार पत्र पाकार, सदा सदा एक एक संसार, कई कोट तीन भवपात, सब के हो सब मह समात, कांसा अंत न जाना थे, आपे आप नानक सब से, कई कोट का ब्रह्म के दास, फिर होवत आत्म प्रदास, कई कोट सत के देते, सदा निहारा है एक ओर नेत्र, कई कोट नाम रास जीवा है, अमर पाए सब सर ही जीवा है, कई कोट नाम गुण गाव है, आत्म रात सुख साहि सुमारा है, अपने जन को साथ साथ सुमारे, नानक ए परमेश्वर के प्यारे, श्लोक करण काज सब एक है, दूसर नाही को, नानक तस बलिहारण जल थल मल जल सूर, अस्तरि कर्म करावन करना जोग, जो तिस पावा सोई होग, फिर मैं साफ ए सत नहारा, अंत नहीं कुछ पारा वारा, हुक्मे कार अकार रहावा, हुक्मे उपजा हुक्म सुनावा, हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार, हुक्मे अनित रंग प्रकार, कर कर देखा अपनी बदराई, नानक सब मैं रहा समाई, सब पावा मान उपजा पावा, सब पावा है तां सात पावा, सब पावा है दिन सात के राशा, सब पावा है तां हर गुण सहसा, सब पावा है तां पत्तू उधार, आप करा आपन भी प्यार, बहुत दिया था आप स्वामी, बिना दिलता हम परगामी, जो पावा है तो कार करावा, नानक दृष्टि अगर ना आवा, कहो मानुष के क्या हो आवा, जो तुम पावा तो ही करावा, जिसका हाथ हो सर सर किसने, जो तुम पावा तो ही करे, हम जान तो दिखा मैं रचा, ये जान तो अपने आप बचा, पर मैं पूजा दे जिस पावा, मुख माहे चार दिन तो फिर आवा, हर कृपा जिस अपनी पर दीजे, नानक ते जान नाम मिले, फिर मैं नीच कौराज, पार ब्रह्म गरीब निवाज, जाता दृष्ट कछु ना आवा, जब सत काल दह दिस प्रगटावा, जाता अपनी तरह दस्तीत,
आता लेखा नंदनंदन दीप जियो पंड कर के श्रीराज अर्थात पूर्ण ब्रह्म प्रजात अपनी धन से आप बनाई नानक जी वह देश बधाई इसका बल ना ही इस हाथ कर्म करावन सबको नाथ आज्ञाकारी बपरा जियो जो कुछ पावा तोई सुन सीओ कलो ऊंच नीच मह बसा कलो सोग हर्ष संग हसा कभी सोग हर्ष रंग हसा कभी निंद चिंद व्यवहार कभी ऊबा का पयाल कभी देवता ब्रह्म विचार नानक आप मिला मनहार कभी नृत्य करा बहु पास कभी ध्वज रह दिन रात कभी महाक्रोध विकराल कभी सर्व की हो प्रवाल कभी हृदय बह भग राजा कभी भिखारी नीचा साजा कभी अब तीर्थ मह आवा कभी पला पला कहावा जो प्रभु राजा के वीरा है सिर प्रसाद नानक सच कह कभी हृदय पंडित कर बसियान कभी मोहन धारी लावा ध्यान कभी तट तीर्थ स्नान कभी संसारिक मुख ज्ञान कभी पीत हस पसंद हो जिया ननक जोन भरमा परमिया नाना नाना रूप जो स्वामी दिखावा जो प्रभु भावा सदा निचावा जो तो भावा सोई हो नानक दूजा अवर न सो अभी सार संगत को पावा उस स्थान से बहुत ना आ जाए अंतर हो ज्ञान प्रदास उस स्थान का नहीं विनाश मन का नाम रखे एक रंग सदा बसा पास रंग का संग जो जल महन जल आए किसाना जो देसी संग मिट गए दवन पाए विश्राम नानक प्रभु का सर कुर्बान श्लोक सुखी बसा मछलिया आप निवार पले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले जिसका अंतर आज अभिमान तो नरक पाती होवत स्वान जो जाना है मैं योगनवंत तो होवत जिसका साजंत आप सौ कर्म मंत कहावा जन्म मरा दह जोन प्रमावा धन भूमिका जो करा दुमान तो मूर्ख अंधा अज्ञान हर कृपा जिसका हृदय गरीबी बिताया नानक जी हां मुक्त आधा सुख पावै धन मनता हो कर गरमावै करण समान चाचे संग न जावै दौलतर मानक भी कर आस फल पीतर का हो विनाश फल से आप जाना बलवंत फिर मह हो जाए पसमंत पिता नाम बताए आप अंकारी धर्म राय करे सुवारी जो प्रसार जाता मिटा अभिमान जो जनमानिक दर्गा प्रवान कोविड कर्म करा हूँ तारे कम तारा सगरी देखारे अनक तपस्या करे अहंकार नर्क दुर्ग फिर कर अवसवकार अनक दर्शन कर आत्म नहीं द्रवाय हर दर्गा तव पैर श्री दवाय आप सौ दो पला चढ़ावे पिता पलाई लिप्त न आवे पर की रेन जानता मारे सब नानक चाची मेरे मल सूल जब नर जाना मृत्यु का सूल तब ये सब सजना ही सूल जब इन जाना है मैं जुट करता तब लग दर्द दोन में चढ़ता जब तारा चाहिए बैरी जीत तब लग नहीं चल ना ही जीत जब लग बहु मगन संग माए तब लग सर्वना ही देश जाए और कृपा के दम दम सूता जय प्रसाद नानक हम सूता सहित सच्चे भक्त उत्साह सपना आवा माया पाचा चावा अनक भोग जितया तू कर नहीं सुनतावा खर खप मरा बिना संतोष नहीं सो जाए स्वप्न मुहूर्त जब तो सब चा जाए नाम रंग सर्व सुख हो बट भागी के साथ प्राप्त हो कर्म करावन आपे आप रसला नानक हर जाप कर्म करावन करना हार जैसा हाथ कहा विचार दैसी दृष्टि करे तैसा हो आपे आप आप प्रभु से जो कि चीनों से अपना रंग सब के दूर सब हूँ का संग दूजा देश सहतरा हर देश आपा एक आपा अनेक मरा न दिलता आवा न जाए नानक सारी रहा तुम्हारे आप उपदेश समझ आप आपे रखिया सब सहसात आप तीनों आपन विस्तार सब तक ऊंचा ओ करना हार उसके चिन्ह पाओ कुछ हो शांत समंतर ऊंचा सोए अपने चलते आप करना हार सबको करा रंगे आपा आप आर
मन मह आत्मा ने अपनी मानक जीवित कौन मंगा साते साते साते प्रभु स्वामी वर पर सारे बिना मुसलमानी साचो साचो साचो सब सीमा कोट मध्य बिना बिरला सीमा सला सला सला के आरूप अब सुंदर अब आप अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी वाणी हर हर सुनी श्रवण बचाणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपा नानक मन श्रीलोक संत कर्म जोई दान करा उधर नहार संत की निंदा नानका दहर दहर अवतार हट करी संत का दूषण आ गया घटा संत का दूषण जम से नहीं छुटता संत का दूषण सत्तर जाए संत का दूषण नर्क मह पाए संत का दूषण मत रहे मलिन संत का दूषण सौदा के हीन संत के अकेत रखा न हुए संत का दूषण शान सच हुए संत प्रकार कृपा भी कर नानक संत संग निंदे की कर संत के दूषण से मत पवा संतन का दूषण काग जो भवा संतन का दूषण सर्प जीव पाए संत का दूषण कृष्ण ज्ञान क्रमाए संतन का दूषण कृष्ण मन जला संत का दूषण सच चला संत का दूषण कोई सर जाए संत का दूषण नीच नीच जाए संत न सीता खाए को नाए नानक संत पारा का वही चीज पाए संत का निंदक न आए संत का निंदक धन चकन न पाए संत का निंदक महा हथियारा संत का निंदक तले फरमारा संत का निंदक राय चयीन संत का निंदक दुखिया आयीन संत के निंदक कर सब रोग संत के निंदक कर सदा दुर्योग संत की निंदा दोख न दोख मान संत पावा का उसका भी हो मूख संत का दोषी सदा अपगत है संत का दोषी सदा अपगत है संत का दोषी सदा दान मृत है संत के विदेशी का दान लगा संत के देशी का संत लाता है संत का दोषी महा अंकारी संत का दोषी बड़ा बिठा है संत का दोषी जन में मरा है संत के दूसरा तो से करा है संत के देशी का नहीं पाए नान संत पावा का लय मिला है संत का देशी आज भी से पूछा है संत का देशी किसा ताज ना तो हुआ है संत के देशी को उद्यान फरमा लिया है संत का देशी एक जड़ पा लिया है संत का देशी अंतर को छेता जो आसमान निर्भर के लिए लेता है संत के देशी की जड़ को सुना है आपन भी आपको लिखा है संत के देशी का अगर नरा संहार नानक संत पावा का लय उबार संत का देशी जो बदलाए जो जल बिहून मछली पर खड़ा है संत का दोषी पूछा नहीं राजा है जो तारक तीन दल नहीं चाहता है संत का दोषी पिता एक एक को चेला है जो दीवार पर एक माइन तो हिला है संत का दोषी कर्म तो रहते संत का दोषी सब मिथ्या कहते जो संदिग्धता करे पाया नानक देख सारा कोई पाया संत का दोषी दिव्य रूप हो जाए संत के दोषी का दर्जा मिला सजाए संत का दोषी सदा चाहिए संत का दोषी ना मरा ना जिया है संत के दोषी की पूजा ना आता संत का दोषी उठ चला नहीं आता संत का दोष ना कृष्ण

अस्तर जात प्रधान जातिया प्रावधान कर कृपा देव हर नाम सात जना की मांगा सूर पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा सूर सदा सदा प्रभु के गुण गावो आस सात सब तरह आवो चरण कवल को ला जा सीत अर्थ करा प्रभु की नीत एक ओट एक आधार नानक मांगा नाम संसार सब की दृष्ट महा सुख हो हर आवा जला दिन चाचा से दम प्रस्ताने पूर्ण पुरुष नहीं बोलाने सुब्रत हरे सिंह रंग उपजा चाव साध कह संग हरे शरण आम सब त्याग संत प्रदास समझ लगलाग हर भागी जटिया सब हो नानक नामरत सुख हो सेवक की मनता पूरी भई सदगुरु के निर्मल मत लई जनका प्रभु दयाल सेवक की नोतड़ा निहाल चंदन का मुक्त जन भया जन्म मरण देश हम गया सुख पुन्नी सरदा सब पूरे सब रहा सब संग हजूरे जिसका शासन लिया मिला नानक प्रभु नाम समाय तो क्यों दूसरा जी काल ना पाना है तो क्यों दूसरा जी किया जाना है तो क्यों दूसरा जन सब कुछ किया तो क्यों दूसरा जी जीवन जीवित दिया तो क्यों दूसरा जी अगर महाराज है जर प्रसाद को जरना लाता है तो क्यों दूसरा जी जिसके दादा है जन्म जन्म का तू चाहता है जर पूरा सच यह बुझाया सर अपना नानक दम से आया साजन संत करो यह काम आम त्याग जपहो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुखा रहो आप जपहो अवरा नाम जुटा रहो भाई सारी करिया संसार तुम पंक्ति तन हो तीन चार सर्व कल्याण के दृढ़ नाम दूस जात पाए विश्राम सर दूसरा हो सनाश नानक नाम जपहो गुण साध एक दूसरी सेवा जाओ मंत्र अंतर सुहाओ नेत्रा के एक तरफ सुख हो मन बिरता है पाल चरण हो भाई जना का मन तन रंग बिरला के पावा संग एक बस दीजा कर्म पर प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा करी न जाए नानक रहा सर्व समाए प्रभु बखंड दीन दयाल भक्त वचन सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कथा कर सत्पाल साध पुरुष कारण करतार भक्त जनो के प्राण अरहार जो जो जप सो हो पुनीत भक्त पाए लावा मन हीत हम निर्गुण यार नीत अज्ञान नानक तुमरे शरण पुरुष परवान सर्व दया पुंस मूर्त मेष पाए एक मूर्त हर के गुण गाए अंत राज भोग बढ़ियाई हर के नाम की कथा मन पहाई न भोजन का पुर संगीत रत्ना जपती हर हर नीत बलि सुकर्मी शोभा धनवंत श्रद्धा बटे पूर्ण गुरमंत हर संग प्रभु देव निवास सर्व सुख नानक प्रगास श्लोक सर्गुण निर्गुण धनसा सुन समाधि आप अपन किया नानका आप ही फिर जात हस करे जब अकार एक कस नान दृष्टा पाप सुन सब कैसे होता जब तारी अपन सुन समाद सब दैर ग्रोध किस संग समात जब इसका वर्ण चिन्ह नान जापत तब हर खोज का पिता व्यापक जब अपन आप पार ब्रह्म तब वो कहा किस होवत भ्रम आपने खेल आप वर्तीजा नानक करना हार ना दूजा जब होत सब केवल धनी सब बंद मुक्त कहो किस सब धनी जब ईता है हर अगम अपार सब नर्क सुर्ग का कौन अवतार जब निर्गुण सब सह सुधार सब सुर सकत कहो किस खाय जब आता है आप अपनी जोत धरा सब सबन निर्दर सबन सत धरा आपन चल से आप करना हार नानक ठाकुर अग्नि अपार अविनाशी सुख आपन आसन तह जन्म मरण कौ कहा विनाशन जब पूर्ण करता प्रभु सो सब जम की प्राप्त हो चित हो जब अवगत अगोचर प्रभु एक सब चित्र भगत पिछले चलेता
जब नाथ निरंजन अगोचर अराधे तब कौन चित्ते कौन बंधन बाधे अपना आप ही असर जा नानक आपन एक आप ही उपर जा जय निर्मल पुरुष सुख सत होता जह दिन मैल कहो क्या होता जह निरंजन निरंकार निर्वाण जह कौन कौ मान कौन अभिमान जह श्री केवल जगदीश जह सल चंद्र लगत कौ पीस जह देव प्रीति देव संग समावा जह पिता पूर्व कवन प्रगटावा करण करावन करनाहार नानक करते का नाही सुमार बल अपनी शोभा आपन संग बनाई सब कवन भाई बाप मित्र खुद भाई जह सर्व कला आता प्रवीण जह देव कपूर कहा कौन जब अपन आप पूर्व सहारा है तो सगन अब सगन कहा विचार है जह अपन ही अपने आप मेरा है जह कौन ठाकुर कौन सैया तेरा दुश्मन दुश्मन है दुश्माद नानक अपनी रब जानो आप जह अचरिया तेरिया भेद समाया वह किसा व्याप समाया आप सब आता है आदेश क्यों गुणता ना ही प्रदेश जह ऐसा एक भगवंता जह कौन अत्यंत पुतला बह चिंता जह अपने आप कट जा रहा जह कौन कथा कौन सुनना हारा बहुत दे अंतिम से ऊंचा नानक आप सब आता है प्रभुचा जह आप रचे प्रपंच लगार जो गुणमा जिनो गिरफ्तार आप पुनता पड़ी कहावत तो नर्क पूछावत आल जाल माया जंजाल हम भरम भर पहार जो सूख मान अपमान अंत प्रकाश जियो बख्यान आपन फिर आप कर देता फिर संकोचा तो नानक देता मैं आयदा पढ़ कहे आप मैं पटना पाकार संत प्रताप बहु पाठ का आपा धनी उनकी शोभा उन्हों बनी आपा चौध करा अंग सोज आपा रख सोजन निर्जोग जिस पावा जिस आपन ना हिलावे जिस पावा जिस फेर फिरावे वे कुमार असहा अरम से बोला है जो बुलावा

आर तथा आर सुनाहार आता एक आविष्कार जात सावा दास की प्रकार अपना पान लय समाए क्योंकि तुम नहीं कुछ हो आपन सूत सब दर करो या तो ब्रह्म जीव आप बुझाए सच नाम सोई जान पाए तो तुम धरती सत का देता नानक सर्व सही सता देता जी जंतर सब सांसा हाथ दीन दयाल अनाथ सुनाथ जिस राधा के स्वय न मारा है तो मुआ जिस मनो के सारा है तो सर अवर कहां को जाए सब से एक निरंजन राय जी की दुख दाता सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ गुण निधान बेअंत व्यापार नानक दास करा बलहार पूरन पूर रहे दयाल सब ऊपर होवत कृपाल अपने कर्तव्य जाना आप अंतर जानी रहो व्यास कृपाला जीवन भव पहास ये जो रते सुख सत्य हाथ ये पावा पिछड़ा मिलाए भाई कहा हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मानिया कर्म हार नानक इस जानिया जन लागा हर एक नाय उसकी आसना दिखती जाए सेवक सब सेवा बानी आई हुक्म बूझ परम पर पाई उसे ऊपर नहीं विचार ना का मन बचिया निरंकार बंधन तूर भय निर्भर अंदर पूजा गुर के पैर कोई बहुत पुजिए परमेश्वर ले नाम तार पर या पहले ले सार संग में करा आनंद गुरुदावा करा परमानंद राम नाम सत करा विचार दुर्लभ देव का करा उदहार अमृत बचन हर के गुण गाओ प्राण कर्म का यह स्वाओ आज पार प्रभु तीर्थ मेरा मिटा अज्ञान दिन का अंधेरा तन उपदेश हृदय बतावह मन इत्तीनान फल पावह अल्प पल्प दो देव सवार राम नाम अंतर उर सहार पूरे गुरु की पूरी विद्या जिस मन बसा के साथ परिचया मन का नाम जप निर्णाय लोक दर्द मन से हो जाए सच व्यापार करो व्यापारी दर्जा निभाए तेज कुमारी एका तेज रखा मन मारे नानक बहुत नया वह जाए ऐसे दूर कहाँ को जाए सबरा राशन हार से आए मेरे पाव जपा सगर पाव मिटा सब कृपा ते प्राणी सुता जिस सब राशा कितना ही भूख नाम जपत मन होत सुख चिंता जाए मिटा अहंकार जिस जन का कोई न पहुंचे न हार फिर ऊपर ठंड आदिर पूरा नानक कांते अर्ग पूरा मत पूरी अमृत गांति ब्रत दर्शन देख तेरित चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तन सेवा तीर्थ परवान अंतरगामी पुरुष प्रधान जिस मन बसा तो हो संभाल कांता नित नयावत काल अमृत भय अमरा पर पाया कार संग नानित हर प्याया स्रोत ज्ञान अंजन गुरु दिया अध्यान अनिल विनाश हर कृपा ते संत पुरुषया नानक मन प्रदास अत करि संत संग अंतर कर दीसा नाम प्रवेशा ला दानिसा सर्व सुमिरिंदे सतनाहि अंतरंग नानक सारे मौन के अमृत का नाम देवी ना इसका विश्राम तन समाज अनंत सह नाद तन न जाय अतिरिक्त विस्माद सर देखा जिस आप दिखाए नानक कृष्ण से दिखाए तो अंतर को बाहर अनंत तब तक व्याप रहा भगवंत कर्म माह आकाश पयाल सर्व लोक पूर्ण प्रस्पाल बंचन पर्वत है सा ब्रह्म जैसा ज्ञा तैसा कर्म कौन पानी का संत माहे चार कुंत का जिसे सुमारे किसे तुम नहीं कुछ खाओ जो प्रसाद नानक कुछ पाओ देव पुराण सिमृत मह देश चतुर फूल नक्षत्र मह देश वाणी ब्रह्म की सब को बोले आप यह रोल न कर ही बोले सर्व कला कर खेल खेल बोल न पाया गुना अमोल सर्व देश में जा की जोत सार गह स्वामी एक कोट वर प्रसाद परम का नाथ नानक ब्रह्म देव विकास संत जना का पेशन सब ब्रह्म संत जना का हृदय सब धर्म संत जना सुन सब वचन सर्व व्यापी राम संग रचन जिन जाता तुझी रहत सत वचन साधु सब कहत जोरो हो तुई सुख मन कर्म करावन हार सब जान
ਸੰਤਰ ਬਦੇ ਬਾਹਰ ਜੀਓ ਹੀ ਨਾਨਕ ਦਸਨ ਦੇ ਸਭ ਮੋਰੀ ਆਪ ਸੱਚ ਕੀਆ ਸਭ ਸੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਾਚੇ ਸਗਲੀ ਉਪ ਸੱਚ ਤੇ ਭਾਵਾ ਤਾਂ ਕਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੇ ਭਾਵਾ ਤਾਂ ਏ ਸੰਸਾਰ ਸੰਤ ਸਲਾਹ ਲਗੀ ਨਾ ਜਾਏ ਤੇ ਭਾਵਾ ਤੁਸਲਾ ਮਿਲਾਏ ਕਵਨ ਨਿਤ ਕਵਨ ਕਹਿਆ ਦੂਰ ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਭਰਪੂਰ ਅੰਤਰ ਗਤ ਜਿਤ ਆਪ ਜਨਾਏ ਨਾਨਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਪ ਬੁਝਾਏ ਸਰਬ ਭੂਤ ਆਪ ਵਰਤਾਰਾ ਸਰਬ ਨਾਇਣ ਆਪ ਕੇ ਸੁਨਹਾਰਾ ਸਰਬ ਸਮਗਰੀ ਦਾ ਕਾ ਸੁਨਾ ਆਪਨ ਜਸ ਆਪ ਹੀ ਸੁਨਾ ਆਪਨ ਜਾਨ ਇੱਕ ਖੇਲ ਬਣਾਇਆ ਆਜਾਕਾਰੀ ਕੀ ਮਾਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮਗ ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਰਹਾ ਜੋ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਸੋਆ ਤੇ ਕਹੈ ਆਜਾ ਆਵਾ ਆਜਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਜਾ ਪਾਵਾ ਤਾਂ ਲੈ ਸੁਮਾਏ ਉਸੇ ਹੋਏ ਸੋ ਨਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਪੂਰਾ ਕਹੋ ਤਿਨਾ ਸਭ ਕਰਾ ਆਪ ਕਲਾ ਤੂਤ ਅਤ ਨੀਤੀ ਆਪੇ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਜੀ ਕੀ ਆਪ ਸਾਲ ਧਾਰੀ ਸਭ ਸਾਚ ਉਹ ਤੂਤ ਆਪਣੀ ਸੰਗਰਾਹ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਦੂਸਰੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜੀਤਾ ਆਏ ਸੋਤਾ ਕੀ ਆ ਸਭ ਪਰਮਾਨ ਜੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗਾਨ ਜੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸ ਸਦਾ ਸੋਰੇ ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭ ਸੋਹ ਆਵਾ ਨਾ

तेरा गोला होना सुभाग है। एक लफ्ज विच अपने अंदर दी तस्वीर प्रगट कर दी, क्योंकि मैं तेरा बेखरीद गुलाम है, बस मेरा सुभाग ही हो। हालांकि की आंखों की एक अभिमान है कि मैं सुभागा हूं, अपने आप न सुभागा आखना। तूने बाणी में दूजी थाने याद तक कहने लगे आपस को कर्मवंत कहावे, मतलब तो हो जाना अगल समझ। एक पासे अपने आप नु कर्मवंत समझना भी एक हंकार दा प्रतीक है, एक हौमे दा प्रतीक है। गुरु अर्जन साहब शीश होनी साहब स्पष्ट कर रहे हैं, कहने प्रवान नहीं जरा आखद मैं भागा वाला मैं कर्मा वाला, आप उसको कर्मवंत कहावे, जन्म मरे बजोन भरमावे। पर इतने आखते ने हे मालिक मेरा तो ना ही कर्मा वाला है, मेरे को कोई पूछे तेरा ना की है, मैं आखांगा मेरा ना सुभागा है, मैं चंगे भागा वाला। पर मेरे को कोई पूछे तू भागा वाला किए है, मैं आखांगा जी इसलिए क्योंकि मेरे मालिक ने मैनू गुलाम रख लिया, मैं उनका गुलाम है इसलिए भागा वाला।

0: Mujer.
1: साध संगत एक ऐसी मंडी है जिथे गुरु की अगवाई विच सिख ने रब को जीवन वेचना है, रब का बै खरीद गुलाम होना है। फिर उस तो बाद की होएगा, बै खरीद गुलाम होने तो बाद फिर विचार भी गुरु दे हो जा रब दे हो जाएंगे, क्योंकि गुरु भी जेड़े विचार दिंदा रबी दिंदा है। जैसी मैं आवे खसम की बानी, फिर रबी सिद्धांत उनके विचार बन जाएंगे, ते रबी रजा विच जेड़ा तन मिलता है वो उनके जीवन का हिस्सा हो जाएगा। ते अमृतधारी होना भी किस गल का प्रतीक है? उत्थे आके विचार ते विहार, बाणी ते बाणा दोनों चीजा रब्बी हो जांदियां ने। इसलिए अमृतधारी सिख होना रब का बै खरीद होना है। ते होना इस साध संगत की मंडी द्वारा गुरु की अगवाई विच। गुरु ने रहमत करके अपनी अगवाई नाल सिख नू अमृतधारी करके रब दा बै खरीद कर दिता। ते इसे लई लफज वर दिता हुण ए अज तो की है, वाहिगुरु जी का खालसा। वाहिगुरु जी का खालसा की है? रब दा बै खरीद, रब दा नहीं जी अपना। ये बख्शिश कीती, रब दा बै खरीद होने दा मान बख्शिया, रब दा बै खरीद होने दा सुभाग बख्शिया। सो आओ गुरु रहमत करे असी जेड़े रोजाना साध संगत जुड़न दा ख्याल रखने, सानू पता होवे कि इस साध संगत दे राही अमृतधारी हो के वाहिगुरु जी का खालसा बनना है, ताकि रब दे बै खरीद हो जाइए। गुर की बचनी हाट बिकाना दी शर्त पूरी कर देइए। इन शब्दों नाल सिवां दा जा चिक्का फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की। जेड़ा मैं तेरे को विकया ना, ये भी रहमत मेरे गुरु दी है, क्योंकि उन्हें बचना उपदेश राही।
2: थैंक यू फॉर लिसनिंग टू CISK सिख रेडियो 94.3 FM, ब्रॉडकास्टिंग फ्रॉम द वेस्टर्न सिंह सभा गुरुद्वारा इन विलियम्स लेक, ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा। You may contact our broadcast center by telephoning 250-392-3874 or by email at singsabha2@gmail.com. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. The pure belong to God, all victories belong to God.
3: Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Tusi sun rahe ho Sikh Radio 94.3 FM. ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ BC ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 250-392-3874। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, 250-392-3874। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, singsabha2@gmail.com, singsabha2@gmail.com। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

अगम अगाध ऊच आपार जो तुद सेवा है तिन पौ दुख नाहे गुर प्रसाद नानक गुण गाहे जो जो दिसा सो तेरा रूप गुण निदान गोविंद अनूपा।

0: संत जना की बातों पूरा कहो नानक प्रभ लोचा पूरा। संत जना की बातों पूरा वाहेगुरु जी का खालसा
1: वाहिगुरु जी जेता जियो पिंड सब तेरा तू अंतर जामी पुरख भगवान दासन दास

तेहा करी वखियान। समरथ गुरु जागत जोत जाहरा जहूर सर्व कला भरपूर साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र हजूरी दे अंदर सुभायमान गुरु रूप खालसा साध संगत जी, आओ एक बार फिर सर्वत माई भाई सर्वत संगत रचना नू पवित्र करो, गुरफते दी सांझ पाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सर्वत संगत गुरु बख्शस गुरु रहमत दा सदका हर रोज दी तरह इस पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब दीवान हाल विखे परम कृपालू परम दयालु जगत गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी दे अंदर जुड़ मिल बैठे हो, सतगुरु साहिब जी का पावन पवित्र सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे बख्शिश किया होया पवित्र मुखवाक आप संगत ने श्रवण किया है। ये पावन पवित्र मुखवाक शहीदां दे सरताज शांति दे सोमे सच दे सूरज जगत गुरु जिस गुरु दा नाम लया जमन मरन दा चौरासी दा चक्कर कटिया जांदा है। माता दे उदर ते गर्भ जोनी दे अंदर द्वारा नहीं जी